0: Ахмет Наз. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इंडिया और मेड इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि साणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार हुई। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिस देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दे पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नहीं अवधारणा नहीं और इसका उपयोग एक सद से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा सरकार वे ने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम प्लीज काउंसिल सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसद कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति

0: द्रौपदी मुर्मू ने 20 जून से संसद का मानसून सत्र बुलाने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। अमेरिका भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबाद वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक की आशंका है, जब पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी अनुमान होगा। पूर्व क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैच की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए, वहीं जवाब में इंग्लैंड ने उस ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंघम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हरा, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकेन को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली। इन्हें मुकाबले फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एलेन तीसरी वरीयता प्राप्त लैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी से चंद्रपूर केंद्र आहे। साठी 6:05 मिनिटे आहेत। प्रसाद करीत आहोत भक्ती संगीताचा कार्यक्रम मंगल भात।

0: न्यूट्रिशन आहे का, म्हणजे एखाद्या न्यूट्रियंटची कमतरता आहे आणि ते रिप्लेस करून त्यांची क्वालिटी बेटर करू शकतो. त्यांच्याकडे जे बाकीचे प्रॉब्लेम्स त्यांना होतात, एस्पेशली एव्हॅस्क्युलर नेक्रोसिस ऑफ फिमर म्हणतो आम्ही त्यांना, की त्यांना चालाय प्रॉब्लेम होऊ शकतो, तर त्यांचे जे ऑर्थोपिक्स रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आहे त्याच्यावर तज्ञ बोलवून त्यांच्याकडून एक्सपर्ट सल्ला घेऊन ते प्रूव्ह करायचा प्रयत्न करतो. तर इन जनरल ही कम्प्रिहेन्सिव्ह केअर आहे की जे रेग्युलर मॉनिटरिंग आणि त्यांचं पुढे होणारे कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करण्याचा जास्ती जास्त प्रयत्न करतो, जे करून त्यांना हॉस्पिटलमध्ये होता लागतात म्हणे किंवा प्रॉब्लेम होऊ नये. या व्यतिरिक्त सुद्धा आमचे आजूबाजूच्या विदर्भामधल्या कॉलेजेस बरोबर आम्ही MOU केले. आता तुम्ही संशोधनाबद्दल बोललात तर BSc मध्ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंगसाठी आमच्याकडे आता बरेच कॉलेज आजूबाजूचे स्टुडंट तिथे पाठतात. त्याच्यानंतर आम्ही MS ला जर त्यांना प्रोजेक्ट कसा करायचा असेल, त्यांना 6 महिन्यांचा प्रोजेक्ट करायचा असतो, तर त्याच्यासाठी काही सपोर्ट लागला वैज्ञानिक ते सपोर्ट करू शकतात. त्याच्या व्यतिरिक्त आमचे जे स्टेट गव्हर्नमेंट साठी जे ट्रेनिंग प्रोग्राम असतात, कंटिन्यूड मेडिकल एज्युकेशन CME आणि जे एज्युकेशन रिलेटेड वर्कशॉप्स आहेत, कपॅसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स आहेत, आम्ही स्टेट गव्हर्नमेंट साठी किंवा इव्हन नॅशनल प्रोग्राम मी वेळच्या वेळी करतो. अशा प्रकारे बऱ्याच ऍक्टिव्हिटीज आहेत.
1: आपण भारतमधलं सांगितलं, पण परदेशात जर एखाद्या विद्यार्थ्याला जायचं तर
2: समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया. सरकार ने किसानों का आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की. देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है. श्री मोदी ने कल राजस्थान जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन भी उद्घाटन करते हुए कहा, भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है.
3: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई. इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा. साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है.
2: इस अवसर पर नगर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा. श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी. जयपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ राजस्थान में पर्यटन व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.
4: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच जहाँ भी सिविल एविएशन का विस्तार रहा, उस प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे पर उसके शहर के इकोनॉमी पे के वहाँ पे बिजनेस पे विद्यार्थियों पे हर हर क्षेत्र के वर्ग को नागरिक उसका इम्पैक्ट रहता है. उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है.
2: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी. उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है.
3: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन का प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक

0: इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्रुदी ने कहा, देश को सेमी कंडक्टर हब बनने का सपना साकार हो रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे, हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनी थी कांग्रेस की सरकार, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करें 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी करनी पड़े, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी चालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए फर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि है। प्याज की कीमत अब 1,875 रूपए प्रति क्विंटल बढ़कर 2,125 रूपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्राइसों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय और खुदरा मूल्य 31 रूपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 150,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार का सकलन उत्तर आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 3 अगस्त चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभाग में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम

0: शंकर कतर बहरीन कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर शंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ चर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृ शक्ति है वहाँ के भी सम्मानित जितने प्रिंसिपल ने भागीदारी दी थी। अब बेटी के नाम के आगे पर लिखना है माता का। आज पूरी है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था आज पूरे बड़े उसे ठंडी सक है। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला क्यों करे मास्टर को मेला। कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से समर्पित भाव से चलता रहे।
2: प्रकृति बात आकाशवाणी के साथ
0: पर चर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफल पूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ पूर्वी मध्य प्रदेश पूर्वी राजस्थान कर्नाटक तेलंगाना और उत्तर में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के 30 जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ ज्वार भट्टी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट रखा गया है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिग्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गए और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हरा अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.go.in और हमारे newsonair मोबाइल पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्ख के साथ है भारत नाज।
3: धन्यवाद मेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया। सही नीतियों संकट भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना। 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट दिया है। ईरान ने होमुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा। ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने घेरा। जनसत्ता की सुर्खी है राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को। विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ रिफो पर चढ़ा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी। जनहित से जुड़े मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक दिया है। 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी राम मंदिर था निशाने। भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशत।

0: अंतर्गत टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शजील इमाम जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ इसी कंट्रोल फीचर गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगा जा चुका है।
1: और अंतिम मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों नियंत्रण के प्याज का खरीद मूल्य 3% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एकशे 3 MHz FM ध्वनी लहरीवर आकाशवाणीचं हे चंद्रपूर केंद्र आहे। सकाळी 8:15 झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत हिंदी चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीताच्या कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकवित आहोत लगान या चित्रपटातील लता मंगेशकर आणि उदित नारायणच्या युगल स्वरातील गीत। जावेद अख्तर यांच्या रचनेला संगीत ए आर रहमान यांचं।

अभी आप सुने थे बलिस्तान का गाना, लीव सुने लव ब्रेकअप्स जिंदगी। इस पर गाना बिलाल और शाह पंडित की आवाज़ों में गाने जावेद अख्तर और बनाई है अलीम सुमान ने।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चितलोक। लीजिए अब सुनिए सुधीर चौहान की आवाज में पुष्पा फिल्म का गाना रकीब आलम, लिखा इसे और संगीत से संवारा देवी श्रीपाद ने।

0: तरह इंसान नसीब मोहब्बत से संवर है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमक है आने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का
0: मगर कुछ ईद बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायक गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल याद
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरी धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुने विविध भारती राष्ट्रीय देश की सुरी धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है त्रिलोक। सूरज पे मंगल भारी सुन कर आवाजें मोहसिन शेख ज्योतिका टांगरी लोडी ऐश्वर्या भंडारी दनिश साबरी निखर से और संगीतकार हैं जावेद मोहसिन।

तो दोस्तों आज के चित्र प्रोग्राम की आखिरी पेशकश चेन्नई एक्सप्रेस सुनने आवाजें हैं विशाल ददलानी हंसिका अय्यर की और इस गाने का तमिल रैप कांश गाया श्री चरण तुरीरंगन ने बोल हैं भट्टाचार्य और निरंजन अय्यंग के संगीत विशाल शेखर का तो मैं कहूँ आपसे लेट्स गो द डांस फ्लोर

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हाथियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए काए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चौधरी का यहाँ प्रोग्राम दिल्ली आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने फोन किया कहने के यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो भी वहाँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन चंद मामा दूर के पूरे पकान भूरे। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंद मामा दूर के पूरे पकाए भूर के।
1: आप खाए थली में कोठे प्याली में।
0: ऐसी अमूल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विद भारती पर। विद भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाज लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज की फनार कार्यक्रम आज इस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फन कार्यक्रम आज जिस हस्ती केंद्रित उसका लोक इस गाने को लिखने वाले

गीतकार से है जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पी एल संतोषी। लेकिन आज हम पी एल संतोषी बात नहीं रहे बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार एल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद नेहला की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपने करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमि वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करते। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चुराई सुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। कुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के विषय को हराए, लेकिन अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषय में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: कामिनी बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म की अंदाज अपना ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है के बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कद रखा।
1: तुमको सिर्फ तुमसे प्यार है, तुमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार सतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग वह लेकर आते हैं। एक निदेशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

के अगले साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन फिल्म में शीर्ष भूमिका

0: रंग।
1: फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत के लिए राजकुमार संतूरी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। के बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाम।

ये पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन, राजकुमार संतोषी निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराए अपनी अगली फिल्म फैमिली में। फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार तुशी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लिखाए जिसका नाम था अर प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: आज के व्यावसायिक प्रभाज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संक्षी पर छूत आलेख और स्वर यूनुस खान प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले
1: आज के फनकार

0: के बाद सुन का एक कोना, मैं और मी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की गुन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आकाशवाणी से चित्रपूर के नहीं सकाळचे 10 वाजलेत आनंद घेऊया मराठी चित्रपट संगीताचा। चित्रपट संगीताच्या कार्यक्रमास सुरुवातीला एक विता होत बन्या बापू या चित्रपटातील

आप सुन रहे हैं विभा राष्ट्रीय सेवा देश की सुरी धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूँ के दोस्त नीरज शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में जैसा कि हमेशा होता है एक इबारत हम भेजते हैं और उसे फेसबुक पेज पोस्ट करते हैं और उस इबारत को देखकर आप अंदाजा लगाते हैं कि क्या होंगे, कौन से शब्द से होंगे।

आप सुन रहे हैं विभाग राष्ट्रीय सेवा देश की सुरी धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूँ के दोस्त निश शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में जैसा कि हमेशा होता है एक इबारत हम भेजते हैं और उसे फेसबुक पेज पोस्ट करते हैं और उस इबारत को देखकर आप अंदाजा लगाते हैं कि क्या होंगे, कौन से शब्द से होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जा सकते हैं। तो आज की इबारत, हालांकि आपने में से बहुत से लोगों ने वो इबारत पढ़ ली होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए एक बार बताते हैं वो इबारत। कोई फुर्सत के पर ढूंढता है तो किसी को नौकरी की है ताश, कोई सब से दूर होकर खुश होता है तो किसी चाहिए सास पास, उम्मीदों आशाओं चाहतों जरूरतों का फैला हुआ है आकाश, कभी दुख की छाए तो कभी फैले गौर की उजास। क्या कहता है आपका मन, क्या है मुकम्मल जहां किसी के पास। तो ये आज की इबारत जिनमें से शब्द चुनने हैं आपको और इन शब्द को चुनकर आपको बताना कि कौन से गीत शामिल हो सके आज के इस कार्यक्रम में। वैसे हमें बहुत से साथियों ने बसी बात लिख भेजे हैं और बता भी दिया है कि कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक गीत जो आप पर हमारी लिस्ट में बिल्कुल मैच हो रहा है बातों के साथ भी और जज्बा के साथ भी, वो गीत तो कार्यक्रम का पहला गीत ही बनने वाला है। वैसे हमारे साथी कहते हैं जीवन एक रंगमंच है जहाँ किरदार पटकथा पूरी है, किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यही है कि इस कायनात में मुकम्मल जहाँ महज एक खब है, जीवन की खूबसूरती ही इस बात में है कि अपने इन अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाए हैं। क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती, जो मिलता है वो है अवसर, अपने ही की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगा। अधूरी दास्तानों में ही अक्सर सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती है और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती है, ऐसा कहना है। एक और सीखते कि हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, जो गर्मी सूरज से गलती कड़ी धूप से बचले पेड़ की ढूंढता है तो ठंड के मौसम में ठंड राहत पाने के लिए वही सूरज की तलाश करता है। इसलिए कहा गया कि ये जीवन है, जीवन का यही है रूप। बिल्कुल सही बात आप दोनों ने कही, लेकिन आपसे ये पता करना चाहते हैं कि भाई क्या कई सारी चीजें अधूरी अधूरी रहती हैं जी में, या कहीं ना कहीं हमारा मन इस तरह से चलता है या तरह से है कि काम करता है कि उसे हर चीज अधूरी लगती है, जो भी चीज पूरी होती है उसे आगे का ये सोच हमारे मन होती है, हमें कई चीजें अधूरी लगती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और ये भी बताइए कि आपको किस चीज की तलाश है, जो भी तलाश हो सकती है हमें बताइए। और तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। आप बताना है कि आवाज की है क्योंकि हमें तलाश है इस बात की।

0: गीत आप सुन रहे थे मौसम फिल्म गीत में आपने सुना उपिंदर और लता मंगेशकर आवाज को जो हमने आपसे पूछा सवाल का ही जवाब आपने दिया और हमारे साथ ही हम ये भी पूछना चाहेंगे इस गीत में बहुत सी ऐसी बातों के बारे में बताया जाए या कहा जाता है जो कि एक ख्वाहिश होती है बार जब छत पर पड़े होकर पड़े रहकर या सोकर तारे देखना या आसमान मतलब जाड़ों धूप सेकना इस तरह की बहुत सी बात का उल्लेख इस गीत में हमने सुना। क्या आपने इसमें से बहुत सारी चीजों का अनुभव लिया है या कुछ उम्मीद या तमन्ना अब भी आपके जीवन है ये हमें बताया और हमारे साथी ने कहा कि एक मुकम्मल राह बनाने के लिए लोग अपनी आशाएं उम्मीदें चाहतों को पूरा करने की मेहनत कर रहे हैं। कोई फुर्सत पल ढूंढता है कोई नौकरी तलाश में कभी दुख तो कभी सुबह फैली किरण। हमारा भी मन कहता है कि सूर्य की भांति अंधेरे को मिटा जीवन में रोशनी भर देंगे। वो हमारे और साथी हैं वो कह रहे हैं कि जीवन दुख का मजाल है एक धागा सुख का तो सौ धागे दुख के होते हैं। उम्मीद और आशा के साथ एक को सुख की तलाश रहते हैं फिर भी हमें कभी खुशी कभी गम कभी धूप कभी छांव को स्वीकार करना पड़ता है। राजा से लेकर रंग तक सार में कोई भी पूर्ण या सुखी नहीं होता। फूल खिलते हैं तो मुरझा भी जाते हैं जीवन अक्सर गम के साए नजर आते हैं सहलता है हर दर्द को जो हंसकर असल में वही लोग इस जहां में कराते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही लेकिन वाकई चीज में सिर्फ दर्द सहने वाला ही इस जीवन में सुखी रहता है ऐसा नहीं कह सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास तो लगातार करता है लेकिन इस परिस्थिति में है उसमें एक संयम रखते हुए आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं तो शांति का सुकून होता ही है वरना तो हम भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं जैसे कि इस गीत में भी है। ढूंढने की बात हमें बताइए इसने लिखा गीत और फिल्म कौन है इस गीत में नायक।
1: सेवा में निवेदन है।

मचा के हौले हौले हौले हौले आगे ये आग लगा के जो और ही ले जाओगे देखो बे पछताओगे दिल

0: पछताओगे। दिल ही हमारा बचानो बेचारा तो किसके ये तीर चलाओगे। दिल ही हमारा बचानो बेचारा तो किसके तीर चलाओगे। अर्जी हमारी ये मर्जी हमारी तो सोए बिना टुकलाओगे। देखो बे पछताओगे।
1: नौकरी का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज और उन्हीं पर फिल्माया गया ये गीत। शैलेंद्र से लिखा, सल चौधरी का संगीत ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें भी लिख भेजी हैं। और हमारे एक साथी कहे कि आज की भारत तो जीवन दर्श जीने की कला, जरूरतें, दुख सुख, अकेलापन, नींद, जिंदगी और अपनापन बनाए रख वाली जीवन शैली को बहुत अंदर तरह से विश्लेषण किया गया है। कहते ना कि फुर्सले तो पूर कभी उनका हाल भी, जो लोग जी रहे हैं तेरे प्यार के बगैर। वाह क्या बात आप कही। हमारे साथी कहते हैं कि हम तो मौसम में वही करते हैं गीत में कहा गया है। मौसम फिल्म गीत को जब ढूंढता है फुर्सत के रादिन वाले गीत पर हम पूछा था ना जो जो कहा है उसमें से क्या आप करते हैं, तो हमारे साथी ने बात कही है। वही हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि मानव जीवन ही ऐसा है कभी संतोष मिलता ही नहीं, ऐसी की इच्छा पूरी नहीं होती, कभी हो भी जाती है लेकिन नई इच्छाएं पल्लवित होने लगती हैं। हमारे और साथी कह रहे हैं कि ये मुकम्मल जहां बाहर नहीं मिलेगा, जमीन मिली है वो जो आसमां मिला है उसी में थोड़ा सुकून ढूंढना पड़ता है। किसी का दर्द बांट लो, किसी के चेहरे पर मुस्कान आओ तो शायद अपना अधूरा पर ही पूरा लगने लगे। वही हमारे साथी कहा कि अभी तो ढूंढना पड़ा है, जब धूप तेज होती है तो बाहर कर पेड़ों की छांव ढूंढनी पड़ती है। एक और साथी लिखते हैं कि आजकल की भागदौड़ जिंदगी में चाहती है कि कुछ पल सुकून के मिले। ईद मुझे बहुत याद आता है, दिल लगता है फुर्स के रात, दिल चाहता है उठी आसान, दिलदार चलो चांद पार चलो। इस तरह से बहुत सी का उल्लेख किया। हमारे एक और साथी लिखते हैं जिंदगी शायद इसी का नाम है, किसी की अपनी तलाश है, अपनी चाहते अपनी कहानी है। फुर्सत के लम्हों में खुश रहता है तो कोई काम करके खुश होता है, तो किसका संसार अपनों की मौजूदगी से ही महक उठता है। कभी दुख बादल घिरते हैं तो कभी उम्मीद की किरण आती है, लेकिन अधूरे पलों को भी खूबसूरती से जी लेना जीवन की सबसे बड़ी कला है। एक और साथ कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा जहां सच शायद यह है कि हर इंसान की न किसी तलाश में है, किसी को सुकून चाहिए, किसी को सफलता, किसी को कुत्तों की भीड़ में अपना होना चाहता है, तो कोई कुछ पल अकेले जीना चाहता है। इच्छा पूरी तो होती है तो नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, यही जीवन चक्र है मुकम्मल, जहां शायद किसी के पास नहीं होता लेकिन जो अपने आप में संतोष कृतज्ञता और प्रेम ढूंढ लेता है उसके लिए ये अधूरा पल एक सुंदर सफर बन जाता है। क्योंकि जिंदगी सच पाने का नहीं बल्कि जो मिला है उस मुस्कुराकर जीने का नाम है। इतना बड़ा संदेश इतनी अच्छी तरह से आपने लिख भेजा। और कई ऐसा होता है कि अगर हम कुछ ढूंढते रहते हैं

तो जीवन भर ढूंढते रहते हैं, लेकिन सी कस्तूरी अपने कस्तूरिग अपने कस्तूरी को ढूंढती रहती है जीवन जब उसी के पास है। तो हर शक्ति जो है वो हमारे अंदर ही है, और ऐसा हमारे श्रोता भी कह रहे हैं, लेकिन हम भी ढूंढे हैं कुछ सवालों के जवाब जो हम आपसे पूछने वाले हैं। हमें बताएं जो गीत हम आपको सुना रहे हैं किस फिल्म का गीत है, किसकी आवाज में है, नायिका का नाम बता दें तो क्या बात है।

0: हमारे साथियों ने बिल्कुल बताया अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की जोड़ इस फिल्म में नजर आती है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी कहते हैं छत पर लेटने के दिन अब लद गए हैं, वो चांद तारों को निहारना, नदी में गुनगुनी धूप का लेना तो आज भी लेते हैं। ठीक है, दिन लद गए तो उसका कारण तो हम जान सकते हैं आपसे अगर आप हमें बताएं। वही लेकिन हमारे साथी थी कि संपूर्ण यहाँ कुछ भी नहीं, न रिश्ते, न स्नेह, न लोग, न जिंदगी, हर किसी के में कुछ न कुछ अधूरा ही जाता है। किसी के पास सब है पर सुकून नहीं, तो किसी के पास सुकून है पर जीने के पर्याप्त साधन नहीं। शायद ही जीवन है तो जो मिल जाए उसे खुशी समझो और जो कुछ न मिले उसे आगे बढ़ने की वजह मानो। पूरी जिंदगी कुछ पाने की कोशिश में लगाते हैं लेकिन उनके एक मोड़ पर आकर लगता है कि परिपूर्ण तो यहाँ कुछ भी नहीं। इससे जीवन कुछ कमी है तो घबराए नहीं, यही कमी तो आपकी उम्मीदों को जिंदा रखे है। भाई वाह, क्या बात ने कही। हमारे कौर साहब कहते हैं कि मानव जीवन उम्मीदों, जरूरतों, आशाओं और चाहतों से बुना हुआ एक सा अनंत कैनवास है जिसके आसमान पर पल पल बदलते रंगों से सराबोर होता है। जीवन का ये लालित्यपूर्ण आकाश तभी पूर्ण होता है जब हम जमीन की सच्चाई को समझकर उड़ान का हौसला रखते हैं, धूप की सकारात्मकता को अपनाते हैं और क्षितिज को छूने का जुनून बनाते हैं। ये संतुलन ही मानवीय अस्तित्व का से खूबसूरत काव्य है। और एक साथ कह रहे हैं कि कभी किसी को मुक्कल जहां नहीं था, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं था। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। जो अमीर है शायद उसके पास खून या अपनों का साथ नहीं है, जिसके पास है उसके पास साधन नहीं है, जिसके पास साधन है उसके पास वक्त नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि किसी किसी चीज कमी तो बनी ही रहती है। और साथ कह रहे हैं कि इंसान की तरह आकाश तरह इंसान की इच्छाएं भी अनंत है। एक जरूरत पूरी होती तो दूसरा चाह जन्म, इसी तरह इसी आकाश के नीचे एक भी उदासी और सफलता छाती है तो कभी सुख और नई उम्मीद की किरण बिखर जाती है। ये जीवन के उतार ढाव का शाश्वत है। मानव जीवन के सबसे गहरे सत्य और उसके विरोधाभासों को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। तो बात तो बहुत सी हो रही है लेकिन ये तो बताइए कि आप अपने जीवन क्या कोई चीज ढूंढे बिल्कुल शिद्दत से जिसे ढूंढी, ये बताइए। चाहे वो तो घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है, जीवन साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने किस चीज की तलाश सबसे ज्यादा की अपने जीवन में और क्या वो आप मिला या मिली, ये हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का गीत। हमें बताइए कि इस गीत में ढूंढने वाले कौन है, नायक नायिका बताइए, फिल्म नाम भी।
1: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी।
1: दो दीवाने शहर में,

0: घरौंदा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। भूपेंद्र सिंह और लैला की आवाजें, गुलजार के बोल, जयदेव का संगीत और इस फिल्म में नायिका जगवाब और मोल पालेकर जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक घरौंदा। हमारे साथियों ने बताया कि क्या ढूंढ रहे हैं, उन्हें क्या कभी अपने जीवन में ढूंढा और क्या वो उन्हें मिला। तो हमारे साथी ने तो बड़ी दार्शनिक अंश में उन्होंने कहा कि भगवान ढूंढने की खूब कोशिश अभी जारी है। तो इनका जवाब भी हम इसी अंदाज में देते हुए कहते हैं कि अपने मन के अंदर ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर भारती, जिसमें ढूंढने की बातें भी हो रही हैं, सुख की बातें भी हो रही हैं और भी हो रही हैं कि क्या जीवन में कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ है, कि हमारे जीवन में हर चीज मुकम्मल हो गई है, हमें अब ज्यादा किसी चीज की चाह नहीं है, या जिन चीजों की चाह भी है वो भी नहीं पूरी हो जाएंगी। तो तरह से कोई बेचैनी सी नहीं है या किसी चीज लेकर बहुत ज्यादा मन में खलबली नहीं रहती। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि जिंदगी रंगमंच है, जन्म से लेकर देह परिवर्तन तक सफर जीवन रंगमंच से पल, इस हर पल दिन रात भिन्न भिन्न प्रकार के किरदारते जाते, वो कल अखंड जहां नहीं मिलता। और हमारे साथ कहना कि फुर्सत के पल, बिल्कुल आज संडे छुट्टी का दिन, फुर्सत के पल होने चाहिए। लेकिन घर की मिनिस्टर यानी की धरती ने लंबी चौड़ी साउंड की लिस्ट बांधी है और स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि आज सभी आराम नहीं आए तो अदरक इलायची वाली चाय बना के नहीं पिलाऊंगी। वही भी खतरनाक बात हो गई है। और वो कह रहे हैं कि मैंने भी कहा मेरे आका पर मार्केट सुरीला पर प्रोग्राम सुनकर ही जाऊंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज पूरी लिस्ट पूरी कर दीजिए आप। और आप लोगों ने संडे के लिए क्या लिस्ट बनाई, क्योंकि अक्सर हम संडे के लिए कुछ एक लिस्ट बनाते हैं कि ये सारे काम इस रविवार पूरे कर दें।
1: मनोज अनावर राष्ट्रीय देत आहे ठळक बातम्या। विकसित भारत जीएनजी योजनेअंतर्गत राज्यांना 5,000 कोटी रुपयांचा निधी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते वितरित। एलएनजी पुरवठ्याचे आपातकालीन निर्बंध मागे घेत सरकारचा निर्णय। व्हेनेझुएलातल्या भूकंपात मृत्युमुखी पडल्यांची संख्या सुमारे 3,000 घात। विख्यात अडवाणी गायिका पद्मभूषण तीजनबाई यांचं निधन। आणि देशभरात पावसाचा जोर कायम, मुंबईसह अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत। विकसित भारत जी रामजी योजनेअंतर्गत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज राज्यांना 25,000 कोटी रुपयांचा निधी दुरुस्त पद्धतीने वितरित केला। केंद्र सरकारने या योजनेला आपला वाटा दिला असून राज्य सरकारनेही आपला वाटा वितरित करावा असं आवाहन त्यांनी केलं।
2: भारत सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन में वित्तीय संसाधनों की पैसे की कमी नहीं आएगी। मैं सभी सरकारों पुनः आग्रह करूंगा, भारत सरकार ने अपना शेयर दे दिया, वो अपना शेयर देगा कि मजदूर

लगे मुन्ना भाई फिल्म गीत आप सुनते। इस फिल्म में नायक का विद्या बालन और संजय दत्त नजर आते हैं। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमीन नहीं। वाह, बहुत ही सही तरह इन्होंने अपनी बात कही। एक और साथी कहती है कि जीवन एक रंग है जहां हर तार की पटकथा अधूरी है, कि वो किनारा नहीं मिलता, किसी को कष्ट नसीब नहीं हुई। तो यह है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक खा है, जीवन खूबसूरती बात में है कि हम अपनी अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी नहीं मिलती। मिलता है वो असर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तान में सबसे सुंदर कविता जन्म लेती है और अपूर्ण यात्राएं मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं। साथ ही कहते हैं कि इंसानी उम्मीदें आशाएं चाहते जरूर आकाश तरह असीम और अनंत है। यहाँ जितने इंसान हैं उन्हीं ही कहानियां हैं और उन्हीं उनकी जरूरतें। कोई अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कदमदी की तलाश में दिन रात कर रहा है तो महज चंद फुर्सत के लम्हों की आस में हर शख्स यहाँ किसी न किसी मृग तृष्णा पीछे भागा है और अपने हिस्से कमियों को पूरा करने में जुटा है। शायद ही शायद इसी कश्मश का नाम जिंदगी है। जो कुछ भी से ही मुकम्मल मान लिया, अधूरी ख्वाहिशों को खुदा की राह मान लिया, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने बताया कि घर की चाह थी जिसके लिए दिन रात एक करदा और अपना का सपना पूरा हुआ, पर कुछ साल वहाँ रहने के बाद हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और फिलहाल वहीं रहते पर अपने घर को बहुत मिस करते हैं। हिमको साथी ने कहा कि घर की बहुत तलाशी थी और आज से 10 साल पहले हमें हमारा खुद घर मिला। हमारे और साथी बता रहे हैं कि मनुष्य ढूंढता क्या है, बचपन में क्या, नौजवानी प्यार, बुढ़ापे में वक्त और मरते वक्त माफी। असल में सब अपनेपन के भूखे, कोई कहे तू है ना, टेंशन मत ले, पैसा आएगा जाएगा, लगाएंगे जाएंगे, पर जो तुम जैसा एक्सेल ले उसे कभी मत खोना। तो ये बात भी बहुत सही आपका ही। हमारे और साथी, इतवार का क्या प्लान है, ऐसे बहुत साथियों ने बताया, लेकिन हमारा तो प्लान है कि कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाए और आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस समय या इन दिनों आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें बताइए। और हमें जरूरत है कि इस गीत को किसने गाया है ये भी आप हमें बताएं।

0: जरूरत।
1: किशोर कुमार की आवाज आप सुन रहे थे, ये गीत मनमोहन फिल्म का, ये गीत आप सुना और इसमें नजर आते हैं किशोर कुमार ही। हमारे साथी कहने आज बाहर बच्चों संग घूमने आए हैं, इसलिए सक्रियता कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम कह रहे कि आप सक्रियता से भले ही शामिल ना हो, लेकिन अपने पारिवारिक माहौल में जरूर शामिल रहे। हमारे और साथी कह रहे कि आज इतवार है, फिर डॉक्टर को दिखाकर आपके कार्यक्रम पर भागते हुए शामिल हो रहे हैं। या जो धूप है वो तो बाहर देशों में, गर्म देशों में भी नहीं पड़ी होगी। वहीं हमारे साथी कहने कि हमारे तो क्या संडे, क्या मंडे, बच्चे स्कूल जाते तब संडे को लिस्ट होती, उन्हें फरमाइश एक को कुछ चाहिए होता था तो दूसरे को कुछ। ठीक है, जॉब संडे ऑफ नहीं होता तो अब जो साथ में है तो भी पता नहीं चलता कि संडे है या मंडे। वैसे हमें जो साथी कह रहे हैं कि भाग कर कार्यक्रम में शामिल है, भाई भागी क्या जरूरत है, क्योंकि आपके फोन में आप न्यूज ऑन AIR ऐप डाल सकते हैं आराम से, अपने फोन हमारा कार्यक्रम कभी भी सुन सकते कहीं भी रहकर। और हमारे साथी कह रहे हैं कि अब रविवार को छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी पूरे सप्ताह है, क्योंकि मैं घर पर ही बैठे हूँ, पत्नी को रोने बैठ रहा है, दुकान बंद है। बिल्कुल उनका बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही तुम्हें तो ख्याल रखना बहुत जरूरी हो है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रविवार दिन सभी में होते हैं, वो आज के दिन भोजन में एक विशेष बनाया जाता है और मीठा व्यंजन तो अवश्य ही होता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने व्यंजनों का नाम ही लिखा, वरना कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज रविवार के दिन एक सही से मिलने चाहिए हूँ, उसका तबादला हो गया है दूसरे शहर में। और हम एक और साथी हैं, वो बताएं कि इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत है खूब तेज बारिश की, क्योंकि सभी जरूरत सूख गए हैं। भाई तो ये बारिश कई जगहों पर आ चुकी है और आपके स्थान पर बहुत जल्द बारिश आएगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे साथी लिखे, उन्होंने कहा भी कि सुरीला सफर शुरू किया था तो कड़ी धूप थी, उन्हें जल्दी से कपड़े धोकर सुखा दिए और देखते ही देखते ताली घटा आ गई और बादल गरज लगा, अंधेरा सा होने लगा। कैसा मौसम करवट अचानक से लेता है, तो कहते भगवान की कुदरत, भगवान की रहमत, भगवान की बरकत, सच में लाजवाब है। सुख और दोनों अधिक है, दोनों का सम्मान करें, चाहे धूप हो चाहे काली का छाए, दो में हम मस्त रहें। एक और साथी ने हमें कहा है, बात बताई है कि किस चीज की जरूरत है, तो वो कह रहे हैं कि गर्मी में पल पल केस कटेगा। हमने पूछा तो वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की प्लानिंग के कारण 5-6 घंटे की बिजली चली जाए तो ऐसा लगता है कि केस कटेगा ये पल, और गर्मियों का मौसम हो तो ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हमारे किसी ने किस्से भेजा है कि जब स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त विकास के लिए घूमते, जो अभी पूरी नहीं हुई। दरअसल बचपन से अमिताभ जी का फैन था, रात दिन के बारे में सोचा करता था, उनके जैसा बनना चाहता था, फिल्में देखता था, उनकी जैसे स्टाइल रखता, उनके जैसे बेल बॉटम की पैंट पहनता था और उनके सामने खोकर उनकी फिल्मों के संवाद बोला करता था। स्कूल में ऑफ पीरियड में के संवाद बोलता था, इसलिए टीचर की मार भी पड़ी थी। बड़ा हो गया, जीवन की सच्चाइयां उलझने से आती गई और अमिताभ बनने का सपना सब बनकर ही रह गया। भाई कोई बात नहीं, आप अपने जीवन में तो कुछ ना कुछ बने ही हुए। और हमारे और साथ का कहना है, संडे को और भी ज्यादा काम हो जाता है, छुट्टी दिन तो दिन छोटा हो जाता है, ऐसा लगता है कि चार हाथ हो जाए।

भाई ये वाली तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो, हम मानना चाहते हैं, क्योंकि चार हाथ हो जाएंगे तो उतना काम भी बढ़ जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं जरूरत है मूसलाधार बारिश की, तो जल्द ही आपकी ये जरूरत पूरी होगी, क्योंकि प्रति इन जरूरत को जरूर पूरा कर देती है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी आशाएं आपके पास हैं जो पूरी हो रही हैं और पूरी हो जाएंगी जल्द ही, ऐसी आपकी आशा है। साथ में ये बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

एक अल फिल्म का गीत आपने सुना और बिल्कुल सही जवाब दिया। फिल्म का नाम बिल सही आपने पहचाना। के मर्चेंट और डोमिनिक लिंटोन की आवाज में आपने गीत सुना। इरफान सिद्दीकी ने लिखा, सलीम सुलेम का संगीत। कार्यक्रम सूर्य सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि संडे हो या मंडे हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं, हर दिन बी लाइफ। भाई ये बड़ी अच्छी बात है। हमारे और साथी कह रहे हैं कि आज कल एक मुंह से बोलने की जरूरत है क्योंकि अकेले हैं। कहने को तो सभी हैं इस बार में, लेकिन खाना चाय देने से हमारे दिल को तसल्ली ही मिल रही है। मैं पद को मिस कर जो अब नहीं है। बिल्कुल, आप अपने उम्र के लोगों के साथ कोई मित्र गांठ, क्योंकि एक बार ऐसा होता है कि जो

नौजवान घर की से होते हैं वो अपने कामों में भी रहते हैं, आपको समय पर नाश्ता आना तो जरूर दिया जाए, लेकिन एक भावनात्मक सहारा आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ मिलने जुलने से जरूर मिल जाएगा। हमारे साथी कहें कि मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी श्रीमती वास्तव में मेरी सेवा करती है और मैं भी अपनी पत्नी का पूरा मान करता हूँ। भाई एक रिश्ते की जो ये तो बिल्कुल होना चाहिए एक रिश्ते में, और ये आपके पास है, इसके आपका बहुत बहुत आपके लिए हम आभार व्यक्त करें, आप शुभकामनाएं देते हैं। तो कार्यक्रम में जो एक कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस गीत के बारे में तो हमारे श्रोताओं ने भी लिखा, हमने भी इस बारे में सोचा, लेकिन अब आपकी सारी बातें सुनने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि एक दूसरा ही गीत है आपकी और हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा, और उसे कार्यक्रम का अंतिम गीत बना रहे हैं। हमें बताइए ये किस फिल्म का गीत है और क्या आप इस बात सहमत हैं?

नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त यूनुसन। हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाए और इसका बड़ा ही मजार इतिहास है। दरअसल सन 1947 में 20 से 27 जुलाई तक एक जाने वनस्पति शास्त्री MS रंधा ने महोत्सव आयोजित किया था। इस मकसद ये था देश हरा भरा हो। सन 1950 में भारत के केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री थे डॉक्टर कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। उन्होंने वन महोत्सव को सरकारी तौर पर आयोजित करने का फैसला लिया। मकसद ये था कि

वनों की कट को रोका जाए, धरती को हरा भरा बनाया जाए और लोगों को प्रकृति के करीब लाया जाए। और इस तरह से प्रदेश में हर साल वन महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। लेकिन वन महोत्सव का मतलब यही कि केवल 1 जुलाई से 7 जुलाई में पौधे लाएं, रस्म करें और के बाद भूल जाएं। जब कभी भी हम पौधे लगाते हैं, उनकी पाल करें, उन्हें संजो संभालें, बड़ा करें और इस तरह से जिम्मेदारी निभाएं अपने पौधे के प्रति।

बात सिर्फ वन महोत्सव नहीं है। दरअसल भारत में लगातार हमें पेड़ पौधे लगाकर पूरे भारत को हरा भरा बनाना है, क्योंकि भारत सरकार ने 2030 तक 2 बिलियन कार्बन उत्सर्जन को कम करने का फैसला किया है। वैसे भी बीते 7 वर्षों में हमारे देश में जंगल जो आवरण है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया है, तो हमें पौधे इसे लगाने हैं ताकि वो ऑक्सीजन पैदा करें, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, धरती को पकड़ कर रखें ताकि धरती का क्षरण न हो, और दूसरा हरियाली की ये सुहानी चादर उनको सुकून दे, आनंद से भर दे और धरती को गर्म होने भी बचाए। अब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना ज्यादा है कि मौसम भी अब एक तरह से ट्री से उतर गए। धरती के इस पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए धरती के सारे मनुष्यों को कोशिशें करनी है। एक सामान्य इंसान के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, तो ये कि अपने महत्वपूर्ण दिनों पर, चाहे वो शादी की सालगिरह हो या किसी का जन्मदिन हो, कोई खास मौका, परिवार पौधा लगाए और उस पौधे के पास एक पट्टी लगा दीजिए कि ये किस मौके पर लगाया गया पौधा है। क्या आप ऐसा करते हैं?

विनी में आज बात वन महोत्सव की। वन महोत्सव के बहाने पौधे लगाने की। असल पौधे लगाने की जिम्मेदारी सरकारी तौर पर ही नहीं ली जानी चाहिए। हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने आसपास पौधे लगाएं। अब आप ये कहेंगे कि ऊंची इमारतों में रहने वाले हम सभी लोग अपनी बालकनी में गमले रखते हैं और वहाँ पौधे लगाते तो हैं। इतने काम नहीं चलने वाला है। नए नए निर्माण के दौरान बहुत सारे पेड़ पौधों की कटाई की जाती है। इसकी भराई करनी बहुत जरूरी है। ये कि जरूरी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, सुख सुविधाएं बनाई जाए, शहरों को एकदम सलीकेदार बना जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हरियाली की कीमत हो। उस शहर के तमाम रहवासियों का ये कर्तव्य बन जाता है वो अपने शहर को हरियाली से ढका हुआ बनाए रखें। इतने पेड़ पौधे तक्की की इस मुहिम में तबाह हो रहे हैं, उन सब की भरपाई करें हम सब कर्तव्य। हम सभी को इस दिशा में सोचना होगा।

ये थी आज की त्रिणी जिसमें हमने वन महोत्सव की और पेड़ पौधे लगाने की बातें की। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध दंडवाणी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आसाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधित किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की

0: मती थी। होर्मुज जलद मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु नियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया था। इस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव करा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। चौहान ने सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG राम योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अब जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि राज्य के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा समय रहा था जबकि विकसित भारत जीराजी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को देश में लागू करने में 3 साल लगे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है 1 साल 2 साल नहीं पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना 1 साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन अब 125 दिन रोजगार 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,88,000 पंचायतों ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित जाएंगे समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि VG राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरल के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल अम्बान मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
1: आकाशवाणी विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारत राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
3: भारत और इंडोनेशिया संबंध 2 प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दो देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे साथ ही व्यापार निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
4: एंड ग्रेटर इकोनॉमिक एंगेजमेंट बिटवीन दिस टू लार्ज कंट्रीज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पहले प्रधानमंत्री

0: अल्बनीज़ ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज़ ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीति साझेदारी पर आधारित है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: इलेक्ट्रॉनिकी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत मध्यस्थ सुरक्षा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंदर अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया जिनमें कहा गया था इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी थे।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत जाएगी जो एआई की क्षमताओं उभरते अवसरों और जोखिम का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर सरकार विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6-8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थी। रायपुर के एम्स का इलाज चल रहा था। सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
2: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनारी गांव एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक तंगियों के बावजूद उन्होंने जुनून नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्ताज प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि देशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
3: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में भूल शस्त्र नहीं चलाऊं। अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मुला छोड़ दो या सेना ले ले सावन में।
2: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल राम डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमरीका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति

0: पुतिन ने ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल हॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़ा, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें पराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर होर्मुज जलमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चे शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका किशन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विद्यार्थी राष्ट्रीय सेवा देश की सूरी धड़कन प्रस्तुत कार्यक्रम सदाबहार में।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में बहू की फिल्म गीत आप सुन रहे थे। साहिल उद्यान की बोल रंग का संगीत कर्म सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विद भारती।
1: जिस तरह इंसान का सीर मोहब्बत से संवरता है ऐसे ही फिल्म गीतों की किस्मत चमकती है चाहे वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विभारती पर
2: आप रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार में।

आई मिलन की बेला फिल्म का गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जोरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विद भारती आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी आशा भोस की आवाजों में। एसएचपी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म कश्मीर की कली। सुनिए ये गीत।

0: से बांसुरी गुनगुना लगती है जीवन संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: द्वारी के घर के आंगन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को द्वारी के गंधा में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोह मजूमदार की हर स्तुति श्रोताओं को सुर के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार की सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबाहर नगमे में।

0: विविध भारती पर आप रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और अभी आपने सुना मास्टर एक्स इन बॉय फिल्म से गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ से आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं हजरत जयपुरी कलम से निकला है ये शब्द और कल्याण जी आज की तर्ज इसे मिली मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। चलिए सुन है जी चाहत है फसी गीत।
1: क्या कहने माशा अल्लाह।

0: चाहता है। फिल्म का आप सुन रहे मोहम्मद रफी मन कल्याण की आवाज है, हसरत जयपुरी कोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे में विविध भारती पर सुन रहे हैं।
1: होशियार, होशियार।

सारी दुनिया, सारी दुनिया में अपनी हम है राजकुमार के पीछे हमार सर यहाँ के हम है राजकुमार होए आने वाले

0: जरा यार यहाँ के हम है राजकुमार होए आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है आज कुमार हाय हाय जाने वाले
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबहार नगमे और कार्यक्रम में अगला ये गीत आप सुना राजकुमार फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज शैलेंद्र बोल शंकर जयकिशन का संगीत कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं और ये गीत हमने लिया है फिल्म गुलाम से मोहम्मद रफी की आवाज है असरत जयपुरी बोल शंकर जयकिशन का संगीत

बात है, एक लड़की है, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया। वो तुम ही हो नजनी, वो तुम ही हो महजबी।

तो अब कार्यम मंचाहित में क्या इंतजार रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नारायणगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आदि भगत, विराली भगत, पूर्वी भगत, ता भगत और प्रदीप भगत, साथी विश्व भगत, रामचंद्र भगत, चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अतारी, गुलाम साराही और मिराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपके पसंद पर सुनाने वाले हैं। इसके लिए सुनिए मुकेश और साथी आवाज मजरूह तानपुरी बोल लक्ष्मीकांत प्यारेल का संगीत।

10 नंबर फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मन चाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत की फरमाइश पर शामिल होने वाले बताएं, उससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है। फरमाइश भी आप सभी प्रेम झील धनोरा जगपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू साजन के मास्टर शिवांशु ऋषु अभिषेक नायडू दौलतबाग मुरादाबाद से जार हुसैन नईमा बेगम कासिम अली नदीली और जुनैद अब्बासी आप सभी के पस पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कह जाते हैं कि ये छाटते छाटते

हमें मिली एक ऐसी ऐसा पोस्ट कार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ, तो हमारी से यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम कर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सके। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में एक गीत, देवर के बुलबुल पप्पी लाली का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर गीत।

दो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मन है गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। अगले गीत की फरमाइश हमें आई है प्रण सावंगी से, गजानन निखार, खुशाल गुसरे और रामदेव दे की, और आपने सुना रहा है आवारा तन से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश आवाज, अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी रही है सौदा फिल्म के लिए गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखू जिला चक्की चापा छत्तीसगढ़ राजेश रेखा साव कमलेश रावी साहू हिमांशु एमपी और सिलसाव के साथ ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव शांत राजे जाधव संचित वायात सर्वद देशमुख प्रथमेश प्रणाली सानवी और कल्पना की आप सबके पसंद सौदागर फिल्म गीत सुनिए कविता कृष्णमूर्ति मनहर दास की आवाजें सुखविंदर सिंह की आवाज साथ ही आनंद बख्शी के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीत

0: इस गीत का ही आज मन चाहेगी कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहेगी चाहेगी
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओ, नाट्य तरंग में आज आपको सुनते हैं नाटक मालकाग्निमित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंद रेडियो रूपांतर है। हिंद रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालकाग्निमित्र दूसरा और अंतिम भाग।
3: तो महाराज आज्ञा जी।
4: देव सुंदरी, बहुत दिनों से इस अशोक की तरह मुझ में भी थैरे के फूल नहीं आते, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श अमृत पिलाकर अपने अनन्य प्रेमी के मन की भी साफ़ुरी कर दो।
3: हाँ, हाँ मालविक, पूरी कर दो ये मन की बात।
4: कौन
3: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी फूले जाए हैं। ये मालविका जैसे गुंग गई है, मैं पूछती हूँ तू चुप क्यों है?
4: मित्र, अब क्या रह जाए?
5: जल्दी से पांव का हारा लिया है महाराज।
3: अरे बकुला वालिका, तूने ये दूता अच्छा हम अपने ऊपर लिया है, अब कराना पुत्र के साथ पूरी।
6: देवी, आप व्यर्थ ही हम पर क्रोध रही हैं।
7: भला हम कौन हो
6: महाराज के साथ भी करने वाले? आओ मालिका चले।
3: पुरुषों भूल कर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं तक आर्य पुत्र की चेह चुपड़ी बात पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रिंजाल में फंसी?
5: महाराज, अरे महाराज कुछ तो बनाइए। मेरे हाथों का लगे चुपी कह दिया है, मैं चोरी करने के लिए नहीं लगा रहा। मैं ये देख चाहता था कि अब मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली या नहीं।
4: सुंदरी, मल्लिका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना? हमारे आने देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहला के लिए हम।
3: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता हो कि बेचारे आर्य पुत्र को बहलाने के लिए यही वस्तु मिले, मैं अभाग बीच में आती ही।
4: परंतु देवी,
3: मेरा छल न कीजिए, वहाँ हमें खड़े हो मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
4: ओह,

0: मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर। शांत हो जाओ देवी, मैं तेरे पांव पड़ा हूँ, अब मान जाओ ना।
1: मालवी के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आनी पुड़ी का हम चलेंगे।
2: महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
0: क्या हुआ
2: महारानी? ने मालवी और बकलावरा के पैर भेड़िया लवा कर को नीचे भंडार वाले काल कोठरी में बंद किया महाराज।
0: ओह, ये सब हमारे प्रेम की जानकारी क्या होगा? हमारी क्वेरी ने देहारणी को जब भड़काया।
2: छोटी रानी इरावत ने महाराज,
0: लगता है इरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
2: महारानी धारी की पांव की चोट अभी नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी के पास बैठी थी, तभी इरावती भी कुशंगल पूछने के लिए वहां पहुंचे और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दी।
0: फिर क्या हुआ?
2: क्या हुआ था महाराज, मालव का बकला वल को बंदी बनाकर नागन्याओं के सामने ऐसे पाताल में भेज दिया जहाँ सूर्य किरण भी नहीं पहुँच पाए महाराज।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ मित्र, उन्हें छुड़ाना कोई उपाय सकता है?
2: उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहलार को महारानी धारी ने कह दिया है कि उन दोनों अभिनों को बिना उनकी अंगूठी देके कभी ना छोड़। अब महाराज की वो अंगूठी कैसे हट लगे महाराज?
0: मित्र कोई युक्ति तो लाओ।
2: युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना।
0: हाँ।
2: उपाय मिल गया, मिल गया, महाराज मिल गया, मिल गया। कोई इतकर सुना हो कान में सुनिए।
0: नाग बालक नाग मुद्रा लेके ओ जो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय था तुमने, बस अब देना करो।
2: तो आप महारानी धनी के पास थी, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी पर राजका से सुनकर बहला रही है।
0: तो हमारे लिए वहाँ जाने की अच्छा कर है, इस प्रतिहार जैसे इनको सब समझा।
2: अभी समझाए देता हूँ महाराज, आप वहाँ पहुँचिए। जयसेन इधर आओ।
3: ये यार गौतम,
2: कान में सुनो।
4: जय हो, अरे पुत्र की जय हो। विराज आपकी विजय हो देव।
0: प्रणाम वती। कहो जी, पाँव की पीड़ा कुछ कम हुई?
4: आज तुझ है देव।
5: अरे जियारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ अंगूठा इसने जने से क्यों बात
6: की?
0: ये तो बहुत रहा हुआ प्रतिहार, भागकर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुलाओ।
7: जल्दी देव की क्या?
0: मित्र गौतम कहाँ घूम रहे तुम जो सांप ने?
2: महाराज मैं देवी का कुछ मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो फूल लेता चलूं, मैं प्रमद चला गया, वह फूल तोड़ने के लिए दिन हाथ भाई के काल शरीर का तार मुझे डरने महाराज अंगूठे पर उसके दो के चिन्ह।
4: हाय हाय, मेरे ही कण बेचारे ब्रह्मण के प्राण संकट में पड़े हैं।
6: अरे बात कर लो मैं दबोच लिया।
0: घबराओ मत, लगता है कि सांप विषैला ना हो।
4: हाँ, इसकी तो दशा बढ़ती जा रही है। अरे संभालो इन ब्राह्मणों।
5: अरे गौतम तनिक संभलिए, धीरे से काम चाहिए।
2: मैं आपका पास आऊ बिना मेरे निपुती माँ की देखभाल की।
0: ये क्या कह रहे हो मित्र, अब यह त्याग में अच्छा कर देगा?
3: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा कि आज गौतम को क्या उनके चिकित्सा नहीं होतेगा, इन्हें वहां ले जाना होगा। मार
0: तो संभाल कर इन्हें वहां ले जाओ।
3: देखी कैसा क्या
2: जाने जीव हम सब करते हुए मुझसे कुछ पूछ रहे हो वो क्षण के
4: नहीं नहीं नहीं। अरे गौतम भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
3: याद आया माता, वैद्य जी ने कहा है जलित विधा द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका छुटा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा दी हुई हो, क्या कोई ऐसी

0: वर को मिल सकती है।
1: मेरी समझी में हाथ मुद्रा जड़ हुई है, ये लो, काम हो जाने मुझे लौटा दो।
0: देवी की बच्चे आ गया, आए आए।
2: जैसे ये उठी मुझे तो कुछ देर बाद मंत्री जी बहाना करे महाराज बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से ब्रह्मद्वार पहुंचा देना, समझे?
0: जो

0: कौन? हाजी गौतम, आज आपने पंडार में क्रिया आई।
1: ये देखो महारानी की अंगूठी।
0: अंगूठी तो उन्हीं की है।
1: तो तुरंत माल्य कर बकलालका को अपनी उस कालकोठरी से मुक्त करो। यहाँ कितना अंधेरा है, कालकोठरी में तो
0: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
1: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें मालूम, ज्योतियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए काम बंद को मुक्त कर जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया और
0: ठीक है मैं उन दोनों अभी छोड़ दी।
2: धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने कैसे खेला?
1: ये फिर बताऊं बकलवल, इस समय तुम मालविका को गो मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर रक्षा करो। मैं महाराज ढूंढ कर वहीं लाया।
2: जो आया।

0: सही मालविका, महाराज को प्रणाम कर आपको। ये तो समुद्र है, मैं लगवा महाराज चित्र है। अच्छा की तुम मुझे बना रही हो।
1: बनाना कैसा, इस चित्र महाराज तो है।
0: तो दोनों प्रणाम करें। स्वामी की जय। उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज चित्र में ची भर कर बाज का रूप देखकर भी मैं आखा नहीं रही। क्यों सखी, चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम चितवन से रहे हैं?
1: ये छोटी रानी रावती।
0: ओ सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक से नहीं पड़ता। सबकी ओर ध्यान हटकर केवल देवी इरावती ही मुख निहार रहे हैं। ये भोले थर के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर डॉक्टर ने ली है। अच्छा, तुम भी इसे बनाती हो?
1: क्यों महाराज, देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को अब से अधिक प्यारी है।
0: तो फिर मैं क्यों तिल तिल देह जला?
2: एक हमारे नैनी।
0: स्वामी की जय हो।
2: चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारे मुख मुद्रा को देख कर क्यों रो गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तुम्हारे सामने खड़ा है।
0: तो क्या मैं सचमुच चित्र में स्वामी से रो रही थी? स्वामी की जय हो।
2: प्रिय,
0: आप कहते कहते चुप क्यों रहे महाराज?
2: मित्र क्या बता, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखें बसी हैं, किंतु देख देखते उछल हो जाती है। हमारी
0: सखी ने महाराज को बहुत चाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो ये तुम पर भरोसा करने लगे। अभागी तो महाराज से स्वामी की कभी भेंट नहीं। महाराज इसका उत्तर आप ही सकते हैं।
2: उत्तर क्या दें बड़ा बालिका, हम तुम्हारी सी से अब कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकदम तुम्हें प्रेम की अग्नि को साक्षी बनकर इसकी सेवा के लिए अपने समर्पित दे रहे हैं।
3: अरे बकला वाले का उधर देख, नन्हे शो के पत्तों को हिरन से जा रहा है। हाँ। आ उधर

0: your bad boy home.
1: निपुणिका, ये सूचना ठीक है कि आप गौतम रुद्र गृह द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
2: मैं रुक्मिणी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
1: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वही चलकर हम का हाल जान ले। और
2: आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
1: उस समुद्र गृह में महाराज का चित्र है, वहाँ जाकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
2: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही क्यों नहीं मनाती?
1: अरे पगली, किस दूसरे से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया पर उठी ही थी। आ समुद्र गृह की।

0: देवी वो देखिए आर्यगण सांड की तरह समुद्र ग्रह के पार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेटे की कैसी दशा है? लगता है विश्व विकार अब पूरी तरह दूर नहीं,
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देव मालिका,
0: सुन स्वामिनी, ये गौतम पेट तो बता है आपके दिए लूहों से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका।
2: मालविका, तुम छोटी राती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
0: ये प्रश्न बोल थे, आइए दोनों उसके की उठ में जाएं। अब यहाँ से मैं इस पोक बामर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी हूँ। ये
3: महाराज बताइए, महाराज बताइए मुझ पर सांप आ गया।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा कि केकी के कांटों से सांप के दांतों का फूट मूट बनाकर मैं सांप पर जो कलंक लगाया था उसे मुझे दंड देने के लिए सचमुच कांप आ गया। मैं बेकार ही था।
4: मैं कहां था?
5: महाराज आगे ना जाइए, वहाँ कुटिल सांप बैठा है। महाराज रुकिए।
1: कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेम युगल के मन की साथ पूरी होगी।
4: दीरावती
1: देखिए बकुलिका, ये किसने? बकुला बालिका, तुझे बधाई है, दूरी के रूप तूने इन दोनों को मिलने का जो संकल्प किया वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, दोनों को बलग्रह से छुड़ा किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारी के पास जा, पूछ के हुआ कैसे?
0: जो आ गया
2: गड़बड़ घोटाला हो गया, तो मेरा छूटा हुआ कबूत
4: इन दोनों को हमने बंदी गृह छुड़वाया है। उत्सव के दिन अब सेवकों को बंदी बना उचित नहीं है ना?
0: देवी
1: साथ है निपुरा, लौट आई
0: रास्ते में मुझे निजी भंडार पे हेदार गई, उसने बताया इधर कान सुनिए।
1: सेकी बकुला का मुझे तो हाथ चल रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है।
0: अच्छा तो ये सब इस ब्राह्मण की दूत है जो प्रेम थी के मरी महोदय।
3: यदि मानवी का ज्ञाता होता तो क्या तो मैं महाराज को ऐसे पूछने था?
1: मैं सब समझती हूँ, मैं भी महारानी रानी के पास ही हूँ।
6: राजप्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार। हर समाचार महारानी के प्रिय सुनहले अशोक वृक्ष का हर समाचार। उसका दौर पूरा हुए, पांच आते भी नहीं थी कि उसके फूल आ गए। अपने सुनहले अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आर्य प्रवन में महाराज को बुलाकर सुनहले अशोक के फूले का उत्सव मनाएंगी।

सेनानी विदर्भ विजय पाली विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सिंह।

0: जय हो। विधु विजेता पुत्र की जय हो।
1: देवी सुने अशोक के बोलने पर आप भी बधाई।
0: विराजे देव विदर विजेता महाराज जय हो।
1: प्रणाम भगवती।
0: आपके मुख की साथ पूरी हरे पुत्र फूलों से देश सुनहले अश की शोभा निहारिये। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रगृह बना है।
1: देवी के हाथों अशोक का ऐसा दर होना ही चाहिए क्योंकि ये वस्त्र लक्ष्मी के निपर नहीं देवी के प्रयत्न से फूटा है और हमें आज ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे दी गई है ना।
0: हाँ महाराज, जब से अपनी माँ वसुंधर को पूजापति जी यज्ञ के घोड़ा रक्षक बनकर ले गई तब से उसके कुछ क्षेम के मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती।
1: हमारा पुत्र चिरजीवी।
2: महाराज जय हो। विधर्म जो कलाकार स्त्रियाँ आई हैं यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए। देव की आज्ञा। लीजिए महाराज प्रस्तुत हैं।
3: महाराज की जय हो। महारानी जय हो।
1: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
3: महाराज हम लोगों ने संगीत सीखा है।
1: लो देवी इनमें से इसे चाहो अब लिए चुन लो।
0: मालिका आखिर देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
3: और राजकुमारी आप जय हो। राजकुमारी जय हो।
0: अरे मालविका राजकुमारी।
1: मालविका राजकुमारी।
3: हाँ महाराज ये हमारी राजकुमारी।
1: कैसे?
3: सुनिए महाराज आपके सेनन विदर्भ के राजा को परास्त कर जिन कुमार माधव सेन बंदी गृह छोड़ाया है उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी।
0: ओह तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दास बनाया। ओह चंदन से खड़ का काम लिया मैंने कितना बड़ा आप किया है।
1: भद्रे बाइये ये रूप में यहाँ कैसे आई?
3: मैं निवेदन करती हूँ महाराज कुमार माधव से हम सब लोगों के साथ राजकुमारी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनकी मंत्री आर्य सुमति भी साथ में थी। रास्ते में कुमार माधव को उनके चेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे राजकुमारी जी को वहाँ से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
1: फिर क्या?
3: आगे का हाल नहीं मालूम महाराज। आगे का हाल मैं अब बताती हूँ महाराज।
1: भर्ती आप?
3: राजकुमारी सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
0: हाँ वही है।
3: प्रण भगवती कल्याण हो।
1: भगवती क्या ये भी आप शिष्या हैं?
3: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृत्तांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
1: अच्छा अब कुछ बात समझ में लगी।
3: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की ली थी। जब माधव से बंदी बन लिए गए मेरे भाई सुमत ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदेश की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालिका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हुए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल होकर जाता था।

0: शास्त्री जी, ये बड़ा ही भयंकर जंगल है, यहाँ दिन में भी रात हो गई हो।
1: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ शस्त्र सहित हूँ।
0: भैया आप भी तो
1: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, पंच मात्र भय नहीं होना चाहिए को।
0: अरे क्या हुआ, सब लोग एक साथ रुक क्यों गए?
2: ये जान प्यारी है, वो अपना सब सामान और धन चुका जा रख दो।
0: पुलवाना जिसका भाई था ठाकुर ने ले लिया है।
3: जाइए नहीं, इन्हीं को भी सारा से मैं अभी इन जानों को भगाता।
0: हमारे सैनिक ये करके सब मर रहे हैं, भगा रहे हैं। अरे भैया लघु लोहा उधर आ रहे हैं, डॉक्टर भैया को अकेले ही किया है, मंत्री जी मैं जैसे गिर
4: और एक प्रकार से भाई सुमति प्राण देकर अपनी स्वामी का भा चुका थी, उस दुख के आघात में मूर्छित हो गई। जब झे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप टूट कर मैं सनासिनी बन गई, राग के राज्य में चली आई। बाद में मालविका यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चल कि इन आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंग से छुड़ा यहाँ रानी के भेज दिया है।
1: ओह, विपत्ति आने मनुष्य का कितना अनर्थ हो जाता है। जो सती लाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
5: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात पाकर आपने ऐसा नहीं किया।
4: ऐसा ना कहिए महारानी, मैंने सोच समझ कर इस रहस्य को इतने छिपाए रखा। जब इन पिता जीवित थे एक साधु आत्मा ने भविष्यवाणी की थी।
5: क्या?
4: ने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बन करना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े योग्य और प्रतापी पुत्र से होगा। जब मैं देखा कि भविष्यवाणी आपके चरण की सेवा करते हुए पूरी हो रही तो मैं चुप बैठी रही। और
6: महाराज की जय हो, मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
1: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यशसेन और माधवसेन आधा आधा बांट दिया जाए, दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन आपस में बांट कर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी इच्छा बता दो।
6: जो महाराज की था।
0: राजकुमारी ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके भाई राजकुमार को मां ने आधी रात का शासक कर दिया है, उनके प्राप्त के यही बहुत है।
6: महाराज की जय हो, आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
1: पिताजी का पत्र लाओ देख।
0: ओह, मेरा वीर से सुन को छटपटा रहा है, मेरे बेटे वसुमित्र का आज समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर ही संकट पूर्ण कर सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना पत्र।
1: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने घोड़ा 100 अश्वों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में एक वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था। वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था, उसे यमुना ने पकड़ लिया। हल तक हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ। फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोर छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अनुशान द्वारा छकर लाए गशु से राजा अगर ने यज्ञ था, वैसे ही हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व यज्ञ रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न हो, बहू के साथ की देखने लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की भी कृपा है जो हम लाया।
4: महाराज महारानी पुत्र की विजय के लिए दोनों बधाई। देवी अब तक अभी पत्नियों की ही सिरमौर थी, आज से आप माता होने की गौरव।

0: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समय पराक्रमी निकला।
1: आज बहुत प्रसन्न है। मगल जाओ, यज्ञ के साथ समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
0: जय
2: आज्ञा।
0: निवास सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय समाचार दो। देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मोह मांगा पुरस्कार देने का मैं वचन दिया। हम वो वचन पूरा करना चाहती हूँ, तो कोई विघ्न न डाले।
2: देवी कैसी आज्ञा।
0: मालविका इधर आओ। प्रस्तुतदेव, आज पुत्र अपने कुमार की विजय जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में ये प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे आप जा क्यों रहे, मालविका ग्रहण की।
3: देवी महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी है दूल्हे लजाई करते हैं।
4: श्रोताओ, नाट्यतंग में अभी सुन रहे थे नाटक मालविका ने मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाटरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
5: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तनाए सुनहरे गम का बिछौना, यादों का मीठा जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन अपने पन का काम, छाएगी उस रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोता नमस्कार, उजाले उनकी यादें, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं, जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने किया मजबूर। फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलन थे सदाशिव अमरापुरकर, असल जिंदगी में थे ऐसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी याद के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की याद के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी पुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यून खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: आपस मांगते हैं, हाँ सत्य है, वो ही हो चुकी है रीमा जी। किसी की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव की, और उसके बाद बड़ा माइलस्टोन है वहाँ तक इस बच्चे में।
2: So, जैसा मैंने कहा कि अर्ध सत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में इनकी थी,
1: 10 साल तक चलता रहा मामला,
2: 10 साल तक वो मामला चल रहा। और बात ये थी कि उस समय रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते हैं मुझे उस समय बी चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है भी नहीं पता था। ओके, तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी प्री थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते हैं, राइट। तो उस समय

कमर्शियल विलन के रोल काफी की के अपने इंडस्ट्री का वो टैग लग जाए कि एक तक अगर काम कोई अच्छा कर रहा है तो उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली बात है, ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म दो दो तीन तीन साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और इसके बाद भी वो चलती थी, इसलिए जो चेंज होता था ट्रेंड जो चेंज कल इतनी फटाफट हो जाता है वैसा उस वक्त नहीं होता था, 8-10-12 साल तक लोग वही करते थे करते आ रहे हैं, फिर एक पॉइंट सा आया जब पापा को यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत ने लेनी के काम किए तो इसलिए उन्होंने थोड़ा कम दिया था, पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें उनका महानी का किरदार है, उस तरह के किरदार का लोगों ने करके बाद में कोशिश की, पर नहीं लगा मतलब

0: आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें उनका महानी का किरदार है, उस तरह के किरदार का लोगों ने करके बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब भी ये मेरा बायस होगा नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्हें ही द फ्री ये कैसे दिख रहा है वैसे तुमका, तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये त्रिपंथी है तो साड़ी में एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्हें वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई सुपेश था या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, तो करना है नहीं करना है?
0: बिल्कुल, इट वॉज चैलेंज। मैंने कहा अगर कुछ नया है कुछ चैलेंजिंग है तो वो हमेशा ही वॉज फॉर इट। तो और भट्ट साहब साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब बिग नेम एट दैट मिट, तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिंग बिल्कुल नहीं थे, वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले करते थे तब उन्होंने एक किया था भट्टादिली ओसरी उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा यू नो ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर था, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था, उसका भी किस्सा है मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेट बिल्कुल नहीं है, उन्हें ये पता था कि मैं जब दिखता हूँ मैं सुंदर नहीं दिख सकता, तो अभी मैं अगर तृतीयपंथी होने वाला हूँ या तृतीयपंथी एक्टिंग कर वाला हूँ तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूँ, बिकॉज हीरो हीरोइन में होते ही है प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय मीट्स गर्ल दे फॉल इन लव, फिर एक विल होता है, वो विल कुछ अलग लाता है तभी जब फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो कॉन्फ्लिक्ट है।
0: एग्जैक्टली, वरना विल ना हो तो हीरो का काम ही नहीं ना, इसलिए ये बहुत जरूरी था। और भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड जेंडर
0: जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर काम कर लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता बिकॉज उसका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ वो एक पुरुष है, अगर ये साइड में हो तो आपको लगेगा एक्सप्रेशन बिल्कुल औरतों वाले आए हैं, कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूँ, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो ये कर चुके थे।
1: यहाँ गाना सुनते हैं।

अब आते हैं उस किस्से की तरफ जिन्होंने भड़ला दिली ओसी ये प्ले था, इसमें किंत गंधर्व मराठी में ऐसे उसको कहा जाता है, वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत सत्ता जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, भी नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी घर चलेगा। ये जो सब कल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में थी और इसलिए कभी जाते नहीं थे, ना कुछ नाटक प्रयोग हो या कुछ शो हो तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर कहते थे, अरे वाह वाह वाह तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करा है, ये करता है वो करता है। तो उन्होंने सोचा अच्छा आज मैं चलता हूँ देखता, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका लिखने, और वो गए वो पे देखने। और उसमें पने ये किंचित गंधर्व जो फेमिन कैटर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि ना बेटा इस तरह काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर रुके रहे, हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो रुके रहे वहां पर। और जैसे पापा रात में आए घर पे, उन्होंने ऊपर से एक फेंकी और कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा यू नो ऐसे हिंदी में क्या कहता है मुझे पता नहीं।

0: पण असं फेमिन इस तरह से नाचे काम करायचे तुला इस तरह के काम करोगे तो हाँ तो खबर ऐसा फिर से काम या तो वगैरह वगैरह वगैरह तो इसलिए आई थी जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा पर काफी पानी बह चुका लॉर्ड ऑफ अंडर द ब्रिज दादाजी को भी समझ में आ गया कि चलो एक्टिंग है तो पैसे तो कमा रहा है तो चल रहा है लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो जब सड़क आई तब पापा लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल आनी पड़ेगी
1: कि एक बार से वो जनाना
0: जनाना रोल आया है तो फिर से चप्पल खानी पड़ेगी लेकिन तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कहा है वो बहुत बड़े पैमाने कर रहा है और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को कर वो काफी सेटल हो गया था और मुझे याद है दादाजी से छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो काट के भेजते थे बाय पोस्ट हमें बाई में तो उनका ध्यान पूरा था
1: क्या चल
0: हाँ क्या चल रहा है मेरा बेटा क्या कर रहा है बहू क्या कर रही है पोता क्या कर रही है ये सब उन ध्यान था बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली लेकिन उन्हें वो ये देखी थी कि ठीक है करो तुम यही करना है तो करो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल और वो काफी सराहा गया महारानी वाला जो रोल है उसकी आज तक की रीलें थी हाँ। जो उनकी किंग है आज तक संवाद याद किए जाते हैं जो हाँ उन्होंने किए लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करना जरूरी है
0: ओह यस ऑफ कोर्स हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है पुराना मंदिर है ये काफी सारी फिल्म है
1: ये जो 80s वाला दौर
0: हाँ 80s वाला 83 से आगे वाला पूरा दौर सो हुकूमत की बात करें हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म का वो कम था हुकूमत साथ
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और पापा विलन और दमजी हीरो ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई तो एक दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म
1: हाँ ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्में अगर सदाशिव हैं तो वो
0: चलती है तो ये बहुत ही सही बात है और उस समय तो ऐसा कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे पापा और धर्मजी या पापा और मिथुनदा कि या पापा राजस्थान में शूटिंग गए या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं तो तो हुकूमत वाज अ फिल्म लाइक दैट कि उस समय मुझे याद है कि मैं थोड़ा थोड़ा सजने लगी थी कि बुरा क्या होता है अच्छा क्या होता है हाँ और उसमें एक सीन है जहाँ पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस लेकिन उनके हाथ अटके पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से और मैं लगभग 8-9 साल की ही होंगी और उस समय टीवी पे फिल्म नहीं आती थी केबल भी नहीं था तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे थिएटर में आकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़ा को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं तो मुझे इतना सा आया उस वक्त कि मैं घर जाकर बाद में 2 दिन तक पापा से बात नहीं की थी तो पापा क्या हुआ क्या ये वो तो फिर अल्टीमेटली जाने बात करी तब कहा यू नो बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी दुख रख के गोली मारी तो बोले क्यों तो उस बुढ़िया टोंटी टोंटी बोल रहे थे तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है इस तरह हुकूमत याद तो मेरी ये है हुकूमत 50 हफ्ते चली गोल्डन जुबली थी तो पूरा साल भर थिएटरों में
1: और बहुत खूंखार था वो
0: बहुत ही ज्यादा कालनाग कालानाग डीडन या कालानाग ऐसे कुछ शुरू
1: हाँ, और डायलॉग भी बड़ा मशहूर
0: नाग हूं मैं नाग कालानाग सामने आ रहे तो अपने बको भी डस लो विल नेवर फॉरगेट ये बहुत ही मतलब वो लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना
1: बिल्कुल
0: वो जैसे सड़क का भी डायलॉग था ये डायलॉग मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में डायलॉग्स बोलते थे
1: अच्छा
0: हाँ और दे यूज़ एक्सपेक्ट किया तुम बोलो पापा का एक डायलॉग
1: अरे गब
0: तो बहुत मजा आता था तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे तो यही वो चीटी ने अपने खूनों के पे हमारी हुकूमत को खुरदने की जरूरत की थी।

0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग की ऑडियो टेप आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में, बिकॉज जब तक आप थिएटर ही जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते तो सुनते लोग फिल्में। तो ऐसे तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल, उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एक तो पूरा मंदिर की वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें एक एलिमेंट बनकर आते हैं जो कि एक विलेनिश रोल होता है खतरनाक वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना।
0: मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा आधा जला हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं करती। वो फिल्म रिलीज हुई थी तब बहुत छोटी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए की हुई है,
1: सिर्फ
0: सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की।
1: एक और फिल्म विधु विनोद चौधरी की खामोश, वो एक लैंडमार्क मूवी है, वहां से वो पूरी यात्रा जो आगे बढ़ती है, तो उसका मैंने सोचा कि जिक्र करते आगे बढ़े। लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तवानी सामना हुआ,
0: करेक्ट, आखिरी रास्ता में,
1: वो भी बड़ा खनाक रोल,
0: बहुत ही बहुत ही,
1: और समय डरना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल उनको कितनी ली।
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में ही छुपा हुआ
1: था
0: कलार के प्रति प्यार था। अगेन अमित जी का वो कमबैक था, आखिरी रास्ता जब आई थी उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद, वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर हिट फिल्म हुई थी, तो उसमें अमित जी फैन थे, राइट, लोगों को ऐसे जा रहे हो आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे, और पापा बहुत कूल हुआ करते, मतलब हाँ ठीक है ओके, मतलब ये जो एक बात है ये उन थी, सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था, मुझे क्या करना है उसमें वो रहते थे।
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है अमिताभ बच्चन के
0: सामने,
1: और पहले जो लोग विन करते रहे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिव जी आते हैं और वो अपनी पूछ छाप छोड़
0: पूरी,
1: वो जिस तरह से वो नफरत हासिल कर खतरनाक विन बन के वो उसमें पूरा नजर आता है,
0: पूरा पूरा। दैट इज अगेन बिकॉज ऐसा मैंने कहा वो भोला सांब मैं कहते आ रही हूँ वो वैसे ही थे, वो आप मस्त रहते थे, उन्हें क्या करना है मुझे क्या करना है मुझे कैसे करना है अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म हो आके धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आए थे, राइट, तो
1: प्रेशर
0: तो बनता है इस वे, लेकिन फिर भी बिकॉज को लगता था मैं मेरा काम है मैं काम करूं मैं जाऊंगा। और जो आप नफरत की बात करते हो तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतना ही लेकिन डर बहुत लगता था।
1: बिल्कुल,
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे वो पापा अगर घर पे हो तो घर के अंदर नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है ये हम इस सामने नहीं जा सकते।
1: अच्छा, तो स्कूल में होता था सदाशिव अपुरकर की बेटी है तो थोड़ा डिफरेंट है।
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वही था, तो स्कूल जाओ अटेंडेंस पूरा रखो होमवर्क करो ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफ कोर्स सब लोग मुझे जानते थे बिकॉज मैं सचिव अमरापुर की बेटी थी और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त। अच्छा। अब मैं जितनी बात करती हूँ उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये कह सकूं कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है, और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता है जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है बिल्डिंग बन रहा है उसके डोनेशन चाहिए तो रीमा तुम्हारे पास तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा

0: से अलग ट्रीटमेंट किने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी, वो ये जानती कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब हम ही बाहर जाते थे कि शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा थी, पापा साथ में हो ना हो, ये सदाशिव जी की बेटी ये जो है ये आज तक नहीं उठा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात, क्योंकि कभी कभी ऐसा था जब आप उठे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि मैं वहां जाऊंगी कहेंगे शिव जी की बेटी और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
1: ओहो, करेक्ट।
0: तो अगर आप जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त उनके घर जाते थे तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुली इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वो सदाशिव अमरापुर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस्ट लगता था कि अरे ऐसे इन्होंने बताया मैं पापा केटी हूँ फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको मानी पड़ेगी तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
1: बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिन में भी उनका शेड्यूल करता था, शूट्स होते पर क्या उनका करने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था, मतलब मुझे याद है पा जब घर होते थे तो वो हॉल में बैठते थे शांत से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आस रहते थे तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत दी थी। और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके चाय, ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत
0: से ज्यादा उनका प्यार था। दिन भर वो चाय पीते थे के घूर के घूर करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवे एक डेढ़ घंटा शांति से न्यूज पर पढ़ते थे।
1: अच्छा।
0: फिर सवेरे जो ये सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो, वो जल्दी उठते थे 6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे। और उठकर न्यूज पर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना, बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी कर रहे हैं उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो वो और मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी, तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती और मैं कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते।
1: पिताजी भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की, कभी मेरी साइड लेते कभी उसकी साइड लेते थे, पर धीरे धीरे समझ में आया हमें ना हमें जो कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी या आपने क्यों नहीं ये सही समझा या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया। पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है, आपके आजू बाजू घटनाएं घट रहे हैं उसका अर्थ कैसे निकालना है आप डिसाइड करो।
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते थे?
0: नहीं। बिल्कुल नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे, लोग इनको ही देखते रहेंगे।
1: सख्त मनाही।
0: बिल्कुल नहीं आते थे। लोगों ने बहुत प्यार किया, तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो ऐसे उसकी कुछ अच्छी चीज होती है कुछ बुरी चीज भी होती है। मुझे याद है पापा को जैसा मैंने कहा इतिहास का बहुत शौक रहा है और हम छोटे थे तो पापा मतलब हमारी फैमिली उनके जो तीन दोस्त कभी दोस्त है उनकी फैमिलीज से हम चार पांच फैमिली मिलकर हर साल यहीं पर घूमने जाते। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास है वो देना था।

0: बहुत उनकी थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था, तो उन्होंने देखा था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में लताबाद फोर्ट भी है, वहां पर बीबी का मकबरा भी है। तो एक तो जहां पर शहर के अंदर जो मॉन्यूमेंट थे वो देखने के लिए तो पापा आ नहीं पाए, बस वहां पर वैसे इतनी रश हुई है। लेकिन अजंठा एलोरा तो हमने एक बड़ी ट्रेडोर की थी, बिकॉज हम 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब सब पढ़। एक घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी, बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलोसफी उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि अभी गौतम बुद्ध का रोल वो कर पाए, तो लेकिन वो हो नहीं आया। खैर वहां पर लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन गए हैं, पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते, और उस समय हमारी मेटाडोर का जो नंबर था वो एक चेक पॉइंट पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मेटाडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं। हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी, बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेट ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए, क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए। वहाँ पर एक रिजॉर्ट था, वहाँ पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं पाते। उन्होंने कहा मैं बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा होता है तो जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा बहुत लगता है, हालांकि उस प्यार के ही कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये फैमिली मैन भी है, इसकी भी एक निजी जिंदगी है, इस भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है,
1: बिल्कुल,
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अब जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है, वैसे लोगों को भी समझ में आ लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह होती है, इसलिए अभी थोड़ी स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर ये थोड़ा सा एक श्राप है ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: sure.

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते थे, 90 के दशक तक पहुंच गए, हमने सड़क की बात कर ली, और उन जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रूल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक दचल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुलीन वर्वन पूरी स्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा इसकी बात करते हैं, कभी उनसे ये बात हुई कि विलन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइम था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया।
0: अच्छा।
1: तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना नहीं थी,
0: उनकी पंच
1: आते थे और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे तो पापा ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसी तलमला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं।
0: फिर वो जवाब बाद में,
1: हाँ वो बाद में वो उनको मिलता होगा जब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका कॉमेडी टाइमिंग था वो पहले से था, कॉलेज दिनों में उन काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप पे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब वो लगा कि हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक दौर से गुजर रही थी जहाँ पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी, जहाँ विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन ही था। उसके बाद हम साथ साथ है आई जहाँ पर विलन ही था, राइट। तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
0: वो जो हिंसा वाली फिल्म है उस बजाय दूसरी
1: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी, और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी
0: बिल्कुल
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक स्विच्ड टू कॉमेडी बिकॉज उन्हें मजा भी आता था करने में। चंकी पाए हो, गोविंदा हो, मिथुनदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन और हर एक फिल्म में अलग किरदार साथ अलग इक्वेशन,
0: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
1: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आप वो पक्का होता है, आप होते हो और आप एक एक खिलाफ होता है, राइट, कि हीरो आपको मारेगा, खत्म, राइट। पर कॉमेडी में वैसा नहीं था। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कॉमेडी करा है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करा है, कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी थी, आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी हुई उस वक्त, और इसलिए उन्होंने किया वो इश्क किया, उन्होंने आंखें की, फिर
0: आंटी नंबर वन,
1: आंटी नंबर वन

0: कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं, और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा इराजी के साथ,
1: बिंदु जी के साथ,
0: वो यूट्यूब पर अभी अगर आप देखोगे पापा नाम डाल के सदाशिव अमरापुर का कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे व्यूज उसे निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में खाऊं कैसे उसे, है ना, कि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोग सोचा कि उसको कुछ पका दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग जो जो अच्छा सदाशिव जी की पोते हो, सदाशिव जी की पोते हो, ये तो वो सुन ही रही थी, तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुर का कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये था ये बहुत मजा किया है, वो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है दिखाए, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत, तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर से शायद मैं सड़क खाऊंगी, ये सारी फिल्में दिखाऊंगी।
1: का रोल बहुत ही अलग था,
0: बहुत ही
1: क्या लीग थी वो,
0: वो तो मतलब इंद्रजी की फिल्म, वो इंद्र, एक तो इंद्रजी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमल का है, ऊपर से आमिर और जूही, इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी जिसे कहते हैं, वो पहली बार ही आया, मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी
1: बिल्कुल,
0: पर वो नहीं ओवर द टॉप नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी, और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी, तो जो चाहिए वो करो। मतलब मुझे याद है हमारे घर बिल्कुल पास में का सेट लगा हुआ था,
1: अच्छा।
0: तो दो बार मैं गई थी वहां पर, ऐसे ही कुछ मैसेज दे या कुछ ने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, मैं ही थी, और उस वक्त इंद्री ब्रीफ दे रहे, साजी आपको जैसा लगा ना आप वैसा कीजिए, फिर वहां से फिर का ये आता था, साजी ऐसा ट्राई करते, फिर दिलीप ताहिल थे उना होता था, तो सब लोग मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास लिखी ही थी, इंद्री का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म, ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगती फिर से अभी पाएगी,
1: बिल्कुल।
0: तो जिस तरह से उसमें आमने पापा की एक्टिंग की है, ऐसी काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है,
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए
0: प्लीज।

0: ये वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर आउट आउट कॉमेडी और एक अलग धारा चल रही है जहाँ उसी समय में वो दोगी कर रहे थे, कदाचित कर रहे थे, वाह पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे।
0: यस,
1: तो मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है तो वो उसे बिजी हो जाते थे। वो ही जो फिल्म थी एफडीसी की फिल्म थी।
0: बिल्कुल।
1: और सुमित्रा वे सुनील सोनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और ये साथ दिन रही है। सुमित्रा भावे अगेन उनका जो सोशल सर्कल डॉक्टर नील अवसट, नील फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी थी। तो महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोगी की थी। दोगी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन है पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी उनकी वो पहली फिल्म थी।
0: तब तक महत्वपूर्ण फिल्म,
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पा और उनके भी हमेशा जोक चलता कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर तक मैं आपके काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उस तरह से

0: अस्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड ही मिला हुआ है।
1: हाँ।
0: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म को मिला नेशनल अवार्ड। तो पापा आप कह रहे थे कि दौर यह था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
1: और दूसरी तरफ ये इंटेंस
0: काम कर रहे थे बिकॉज वो उनकी पर्सनैलिटी की दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर करते थे कि क्या चल रहा है कैसे चल रहा है। ऐसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है कमर्शियल फिल्में जब आती है तो वो कहते थे ना ये मेरा दुकान है मेरा घर चलता है इसलिए मैं ये करता हूँ लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है मन अच्छा रखना है मुझे ये दूसरा करना जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-10 फिल्में करते थे उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट में अगर हूँ और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूँ। मतलब आप ऐसा सोचिए कि दोगी फिल्म जो है इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क कर रहे हो उस पर आप दिन शूट करते हो और आप इमीडिएट जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर दोगी वास्तु पुरुष जी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मूड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है क्योंकि वो एक टाइम पे ही फिल्म करते हैं वो एक ही किरदार में जाते हैं वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं। राइट आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी आता है क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से आते थे
1: जी।
0: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए वो किरदार बनते हो और फिर आप हो फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर दो प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
1: एक अच्छी ट्रेनिंग हो एक अच्छी बुनियाद
0: बहुत अच्छी बुनियाद है और उस वजह से ये सारे कलाकार पुरी जी हो अमरीश पुरी जी हो अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है मालाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं विरासत में उनका कितना प्यार तो सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओल्ड उसमें एक तो कला रिस्ट्रिक्ट नहीं थे कि मैं हीरो हूँ तो मैं हीरो ही रहूंगा ये भी नहीं था। मराठी में जैसे देवाण घेवाण कहते हैं लेन देन जो लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था। इसलिए आप कोई छोटी फिल्म बना रहे हैं तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते हैं। अभी जो सिस्टम बन गई है जो कॉर्पोरेट सिस्टम है उसमें ये नहीं होता है तो कॉर्पोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें कैसे होल्ड करना है। एक्टर से बहुत कम रह गया है तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर लकी कि हो पाया। इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कल के मिली कूली नंबन मिली वैसे ही भी मिली वह पुरुष गुप्त मिली एग्जैक्टली और आई थिंक इट इज रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे हालांकि ये कॉमेडी कर रहा है ये सीरियस रोल कर पाएगा ये इस किरदार निभा पाएगा ये ट्रस्ट उनका होता था। जैसे भी अहिल्या ने की थी अगेन जयू निकेत पटवन की फिल्म तो 22 जून 1857 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था
1: बिल्कुल
0: उसमें उन्होंने लाल राव होलकर की भूमिका निभाई। तो वो बहुत सुंदर फिल्म है जो लोग देख पाए एनबीसी की ही फिल्म है
1: जी।
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए। मैं उस सेट पर गई क्योंकि पूना ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही तो उस वक्त मैं गई उस सेट पर। तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई है वहाँ के जंगल और उसमें शबाना भी है और काफी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म
1: बिल्कुल। यहाँ गुप्त फिल्म गाना सुनते हैं क्योंकि का जिक्र अभी अभी हुआ।

0: जाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कमले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी यादों के।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों प्यार से।
1: नसीब इंसान का,
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुत है छाया गीत। शाम ली और चांद निकल आया, मैंने पल मूंदी और तेरा चेहरा नजर आया। हर दास था जुदा, हर अदा तेरा ली, बहुत भर रही थी मुझे ये खुमारी। तेरे जबों में खोया रहूं, तेरी पनाहों में सोया रहूं, तेरी बाहों में मेरी रात गुजरे, दिन जो गुजरे अब मेरे साथ गुजरे। नक्त की परवाह है मुझे अब, न जिंदगी की फिर है, तो हेरी मंजिल है मेरी सांसों में, बस तेरा ही जिक्र है।

वो नूर की बूंद जो चांद से टूटकर बिखरी मेरे वजूद पर, अब तक ठीक रहा है जिस्म उसी में, छाया है रकनों में उसी का सुरूर सा, चांद से मिलने लगा था तेरा चेहरा नजर आ गया, कह क्या तेरे कदमों पर बिछाने की ख्वाहिश जो की, सितारों में सिमटा तेरा हुस्न महफिल छा गया, तेरे लबों की जुम्बिश तेरी सांसों की हरत, निगाहों में है मस्ती और अदों में शरारत, शोखी तेरे हुस्न की है सबसे जुदा, हर अंदाज लाजवाब है, आंखों में है वफा।

0: कल रात मेरे सिरहाने पर चांद का एक टुकड़ा बिखरा हुआ था, शायद ख्वाबों में आकर तुमने उसे रखा था। सुबह सवेरे जब नींद खुली तो गुलों की चादर बिछी हुई थी, शायद तुम्हारे कदमों की आहट यहाँ कैद हो गई। दरीचे बाहर झांका तो आंगन में मोगरे के फूल खिले हुए, शायद तुम्हारी मीठी हंसी की गूंज इन्होंने सुनी थी। आज धूप की किरणें ज्यादा ही सुनहरी हैं, शायद तुम्हारे मखमली जुल्फों को छूकर वो यहाँ आई हैं। चांदनी को ओढ़कर जब तुम निकलती हो सरे शाम, सारे दिए जुटते हैं और दिल पुकारता है बस तुम्हारा ही नाम।
1: न झटको जुल्फ से पानी।

अंतराल बाद सबका स्वागत है छागीत में। तुम्हारी हसी यादों का फर अक्सर मुझे भीड़ में भी तन देता है, फिर बस मैं होता हूँ और तुम्हारी खूबसूरत याद। तब तक रेगिस्तान भी मुझे ठंडी झील सा लगने लगता है और मैं एक मुसाफिर सा उसके किनारे बैठकर मैं सोचता हूँ, फिर बस मैं होता हूँ और तुम्हारी खूबसूरत याद। जिंदगी जब थकने लगती है तो तुम्हारी खुशबू का असर कुछ ऐसा होता है, यह रास्ता छोड़ लगता है, हर मंजिल आसान लगती है। मैं चल पड़ता हूँ फिर उठकर तुम्हारी उसी खुशबू और खूबसूरत याद को आंखों समेटे।

एक रंग तुम्हारी निगाह का, एक रंग तुम्हारी अदाओं का, एक रंग तुम्हारे लबों का, एक रंग तुम्हारे गलों का। रंग में रंगी हो तुम, रंग में रंगा है, उस रंग में रंगी है हसरतें हमारी, उस रंग में उलझी है जुल्फें तुम्हारी, उस रंग में रंगी है ये वादियां, उस रंग में खी है कलियां, कहते हैं उसे रंग इश्क का, कुछ मधुशी का, कुछ सुर्ख सा।

आंखों से खींच कर तुम्हारे दन को, तुम्हारी एक एक अदा को आंखों में कैद कर लिया। तुम्हारे हुस्न के साए में है अब मेरी मंजिल, तुम्हें देखकर तुम में ही मैं जी लिया। तब भी शाम आती है तुम्हारी खुशबू से हक जाते हैं, जब भी सुबह होती है तुम्हारी सांसों में धुल जाती है। कभी मोहब्बत की आहटों सी तुम गूंज उठती हो, कभी मत भरी शामों सी बहकती हो, कभी गुनगुनी धूप बनकर सहला जाती हो, कभी चांदनी बनकर धड़कनों को बहला जाती हो। पास आती हो तो जिंदगी बनती हो, दूर जाती हो तो बंदगी बन जाती हो।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जीराजी को प्रदेश में सिर्फ 1 दिन में लागू किया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जापान तेल उत्पादक समूह ने कहा यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया और

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूह में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूख के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन

0: सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुट प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबंध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से हो। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी हे नागपुर केंद्र आहे, प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या।
2: आकाशवाणी नागपूर विणा डोंगरवार आपल्याला प्रादेशिक बातमी देत आहे। ठळक बातम्या। विकसित भारत जी रामजी योजनेअंतर्गत राज्यांना 25,000 कोटी रुपयांचा निधी, केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते वितरित। मुलांच्या जडणघडणीसाठी त्यांना आजी आजोबाच्या सहवासात वाढवण्याची गरज असल्याचं सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत यांचं प्रतिपादन। विदर्भातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाबा तिडके यांचं आज निधन, मान्यवरांकडून आदरांजली। आणि आज विदर्भातील अनेक जिल्ह्यात अतिमुसळधार पावसाचा ऑरेंज अलर्ट। आता सविस्तर बातम्या। विकसित भारत जी रामजी योजनेअंतर्गत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी आज राज्यांना 25,000 कोटी रुपयांचा निधी दुरस्त पद्धतीनं वितरित केला। केंद्र सरकारनं या योजनेला आपला वाटा दिला असून राज्य सरकारांनीही आपापला वाटा वितरित करावा असं आवाहन केलं।
3: ये भारत सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में वित्तीय साधनों की, पैसे की कमी नहीं आएगी। मैं सभी राज्य सरकारों को पुनः आग्रह करूंगा कि भारत सरकार ने अपना शेयर दे दिया, वो अपना शेयर दें ताकि मजदूरों को मजदूरी मिलने में विलंब ना हो।
2: विकसित भारत रोजगार हमी आणि आजीविका मोहीम अर्थात VBG रामी कायदा 1 जुलैपासून लागू झाला आहे। विकसित भारत या संकल्पनेला अधिक गती देण्याकरता या कायद्याअंतर्गत पुढच्या 5 वर्षांमध्ये देशातल्या 2,80,000 ग्रामपंचायतींमध्ये 7.5 लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक केली जाणार आहे अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली। मुलांच्या नैसर्गिक मानस जडणघडणीसाठी त्यांना लहानपणापासून मोबाईलच्या आहारी न देता आजी आजोबांच्या सहवासात वाढवण्याची गरज असल्याचं प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत यांनी केलं। नागपूर इथं आयोजित सन्मार्ग माइंड वेलनेस सन्मुक्ती आणि पुनर्वसन केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते। यावेळी त्यांनी पाश्चात्य मानसशास्त्रासोबतच पतंजली योगसूत्र, योग वाशिष्ठ यासारख्या भारतीय ज्ञानपरंपरेतील विचारांचा अभ्यास करून भारतीय सर्वातील परिपूर्ण मानसशास्त्र विकसित करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली। गोवर्धन, गोसेवा आणि भारतीय संस्कृतीत गोमातेचं अनन्यसाधारण महत्व जनमानसात रुजवण्याच्या उद्देशानं महाराष्ट्र गोसेवा आयोग आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यमाता गोमाता संवाद यात्रेचा समारोप नागपुरातील डॉ वसंत देशपांडे सभागृहात पार पडला। या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते। गोशाळा हे गोशक्तीचं केंद्र झालं पाहिजे, ज्या माध्यमातून केवळ गायीचं संरक्षण संवर्धन नव्हे तर तिथं संशोधन झालं पाहिजे, विविध उत्पादन झाला पाहिजे आणि त्यांचं ब्रँडिंग झालं पाहिजे। तर फडणवीस यावेळी म्हणाले, ही उत्पादनं विविध ठिकाणी विकण्यासाठी नाममात्र दरात स्टॉल्स उपलब्ध करून देण्यात येतील असं आश्वासन फडणवीस यांनी यावेळी दिलं। पश्चिम आशियात लागू झालेल्या युद्धविरामानंतर हॉर्मुझ

0: इस गाने के साथ ही पुराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराहे नए पुराने।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। ये अब आपको बता दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूखा जुखा के अंतर्गत। से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और संगीत में बांसुरी की भूमिका भाग 5। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका मुमताज सिंह, संपादन साहिल झरना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। विशेष जयमाला आज आप सुनिए सैनिकों की शौर्य था शाम 7 बजे। आज आप सुनेंगे असिस्टेंट कमांडर रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। सात बजकर 45 मिनट पर इंद्रधनुष सुनिए सजोर आवाज। रात्रि 8 बजे हमेल में सुनिए नाटिका बहादुर की शादी, लेखन प्री मेहरा, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर। चित्रक का समय रहेगा रात्रि 8:15 पर। रात 9 बजे सुनिए आपके लिए आज के फनकार। आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। तीजा रात आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर और रात्रि 11 बजे कार्यक्रम होगा विविधा। ये थे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार, सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरित मानस आप सुनेंगे 6:35 पर। कल प्रसारित का भाग 241। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका भाग 6। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहायक झरना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को आप पुनः सुन सकते हैं 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे सुनिए त्रिवेणी, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चलो आप सुनिए सुबह 8:30 पर आज के फनकार। का समय रहेगा 9:30। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता परिचित सहानी पर, संवादक राजेंद्र त्रिपाठी, प्रस्तुतकर्ता रश गोखले। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के, इसमें सुनिए रीमा अमरकर से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3, प्रस्तुति तेजश्री कामले। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे होगा कार्यक्रम सुरीला सफर, सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा की सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दोपहर 4 बजे सेहतनामा में सुनिए स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छह गीत आप सुनेंगे शाम 5 बजे। 5:30 पर सुनिए तराने पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। जयमाला का प्रसारण होगा शाम 7 बजे। 7:40 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, कल फिल्म है आप कसम। हवल का समय रहेगा वही रात्रि 8 बजे। कल हवा महल में सुनिए प्रहसन बस 2 मिनट, लेखक मदन बिहारी शरणदीप, निर्देशन श्याम सुंदर प्रसाद। चित्रों का आप सुनिए रात्रि 8:15 पर। रात्रि 3 बजे सुनिए आपके लिए।

रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता परिचय सहानी पर। छह गीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। आलेख और स्वर पात्रिका, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाहिरात। ये थी रूपरेखा आशीष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सनारंजन।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वाद्य पंडित रोन मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका इस श्रृंखला की आज पांचवी कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं और रोनू दादा हमारे साथ स्टूडियो में हैं। रोनू दादा, आज के इस कड़ी में हम तो आपसे ये जानना चाहते हैं, आप शास्त्रीय संगीत के महारथी, बांसुरी के महारथी, फिल्म लाइन में आप कैसे आए? और हमने तो सुना था कि कोई रेडियो कॉम्पिटिशन था जिसमें आप फर्स्ट आए थे।
1: जी,
0: वो तो शास्त्रीय रचना थी, फिर फिल्मों में कैसे?
1: मुझे तो अपने ऊपर विश्वास नहीं था।
0: हाँ।
1: मैं 17 साल का था।
0: जी,
1: मेरे गुरुजी को मेरे ऊपर बहुत भरोसा था, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि जाके फॉर्म भरिए। पंडित विजय राघव जी ने कहा कि भानु दादा के नाम से प्रसिद्ध थे वो।
0: जी जी जी।
1: फॉर्म भरिए। तो पिताजी ने बोला कि वो इस लायक तो अभी नहीं है। बोले कि वो आप है या मैं हूँ। उस दिन मुझे बुक की अहमियत मालूम पड़ी और पिताजी चुप, एक शब्द पिताजी उनके ऊपर नहीं पाए। मतलब पिता से भी अगर कोई बड़ा तो वो है गुरु। क्यों गुरु बड़ा है? क्योंकि गुरु जब ज्ञान दे देता है तो गुरु अगर नाराज भी हो जाए तो वो ज्ञान वो वापस छीन नहीं सकता।
0: बिल्कुल।
1: पैसा तो छीना झपटी करके छीना भी जा सकता है, ज्ञान कैसे वापस लेंगे? इसलिए इतनी बड़ी चीज वो आपको दे रहा है कि जो वो खुद भी चाहे तो वापस नहीं ले सकता। तो पिताजी ने भर दिया गुरु की आज्ञा से और मैं फर्स्ट आ गया। और उस जमाने में साधना सरगम मेरे साथ कंपटीशन में बैठी थी गाने के लिए।
0: क्या बात है।
1: तो बंबई से हम दोनों ही आ गए। साधना उन दिनों मेरी पुरानी दोस्त है, एक बहन की तरह, और वो पंडित जसराज जी से सीखती थी। कई लोगों को मालूम नहीं है
0: जी।
1: तो हम दोनों फर्स्ट आ गए। तो उस जमाने में जो फर्स्ट आते थे उनका कार्यक्रम भी ऑल इंडिया रेडियो में रखा जाता
0: जी।
1: हम लोग गए और माधव राव इंदौरकर जी बहुत बड़े लावादक थे
0: जी। जी।
1: तो माधव राव इंदौरकर जी ने मेरी संगत की
0: जी। किस आकाशवाणी केंद्र से आप ये फर्स्ट आए थे?
1: बॉम्बे से।
0: मुंबई से।
1: हाँ
0: जी।
1: मगर उस जमाने में कम से कम 15 से 20 बांसुरी वादक उसमें आए थे, जो कुछ मेरे से सीनियर भी थे। फिर भी मुझे पहला नंबर मिला
0: जी।
1: और वो मेडल ज्ञानी जैल सिंह जी के हाथ से मिला
0: जी। जी।
1: मजे की बात ये है कि सुनने के लिए जो श्रोता लोग आए उसमें रविंद्र जैन भी आए।
0: क्या बात है। वाह।
1: और रविंद्र जैन जी, उनके बात करने की थोड़ी शैली मैं बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा बजाया तू जरा मेरे पास। हाँ। हाँ। वो तो सूरदास थे
0: जी, जी,
1: तो
0: जी।
1: हाँ, बड़ा अच्छा बजाता। हाँ। कल मेरे रिकॉर्डिंग में आ जा
0: जी। जी।
1: रिकॉर्डिंग के लिए पूरा बांसुरी का सेट होना चाहिए।
0: हाँ।
1: 24 बांसुरी होने चाहिए कम से कम
0: जी। जी।
1: उससे ज्यादा एक दो और भी बेस का हो तो अच्छा है। डी से डी तक जाए और अगर क्रोमेटिक में जाए तो 7 स्वर नहीं है, 12 स्वर है। और डी के बेस से डी के मिल तक आइए, डी से मिडिल से लेके एकदम जो छोटी, जो 4-5 इंच की डी की छोटी जिसको मुरली कहते हैं, वहां तक का बांसुरी कम से कम आप स्टूडियो में। मेरे पास तो 3-4 ही बांसुरी वही लेके मैं पहुंच।

0: किया।
1: और स्वर सप्तक भी होते हैं, इतने स्वर सप्तक की बांसुरी होनी चाहिए।
0: हाँ, क्योंकि जो डी बड़ा है वो मंद्र का है और डी से छोटी वाला वो मध्य है, और उसे मध्य में जाएंगे जब ऊपर के साथ तो फिर तार सप्तक हो गया, तीन तक की बांसुरी आपके पास होनी चाहिए।
1: जी जी,
0: वो कुछ नहीं मेरे पास, मैं तो पहुंच गया रेडियो जेम्स स्टूडियो और वहां मेरे भगवान गा रहे थे,
1: किशोर दादा
0: गा रहे थे।

0: ऐसा दादा गा रहे थे कि मेरे आंख से पानी निकलता जा रहा है कि ये स्वर का बादशाह जिसको मैं बचपन से सुन रहा हूँ वो लुंगी कुर्ता पहन के गा रहा है मेरे सामने।
1: जी, जी।
0: वो बस जहाँ मैं बैठा हूँ आपके सामने इतना छोटा स्टूडियो है रेडियो जेम्स
1: जी,
0: और मेरे पास जो बैठ के तारशानाई बजा रहे थे वो दुखी बाबू, इंडस्ट्री में उनको दुखी बाबू कहते हैं, पूरा नाम दक्षिणा मोहन टैगोर
1: जी जी,
0: और मैं था इतना पतला दुबला कि आप कल्पेश को देख रहे हैं जो भी मेरे सामने मोटा है
1: जी जी,
0: इतना पतला। आप मेरा फोटो किशोरदा के साथ देखें तो मेरे वेब्स में है तो आप पहचान नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे मेरा बेटा कोई है। तो वो दुखी बाबू मुझे बोले कि तू कौन है, और मेरे छाती को उन्होंने अपने हाथ से नापा, इतना बड़ा हाथ दिखा, तू बजाता कैसे है, तू खाना नहीं खाता है?
1: अरे
0: मैंने बोला मैं ता हूँ, बंगाली में बोले खबर खास और की शरीर रही अवस्था, पेट पूरा अंदर रहा और बहुत ही पतला था मैं। तो वो अपने घर ले गए, मछली चावल सब खिलाए, वो सोचे कि खाया ही नहीं है, हालांकि मैं तो खा हुआ था मगर 17 साल के लड़के को तो फिर से खिलाओ तो फिर खा लेगा वो,
1: जी जी
0: मैं फिर खा लिया। वो एक होटल में रहते थे, उस होटल का नाम मुझे आज भी याद है, मानसरोवर होटल। बोले कल आ जा सुबह, तब 9 बजे शिफ्ट होता था और सीनियर म्यूजिशियन एसोसिएशन का मेंबर तो था नहीं, तो मुझे फाइन भरना पड़ता था 10 रुपए उस जमाने में।
1: अच्छा, अब बड़ी कीमत थी 10 रुपए?
0: 10 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी। वो रविंद्र जैन का भी फाइन लिया मेरे से और 140 रुपए पेमेंट था जो काफी था, ए ग्रेड का पेमेंट मुझे दिया, ना होते हुए भी बांसुरी से इतने खुश हुए। बुकी बाबू मुझे ले गए और पहली बार मैं फिल्म सेंटर में गया और वहां पे लता जी खड़ी है, अमित कुमार खड़ा है और 100 पीस ऑर्केस्ट्रा और 40 वायलिन सिम्फनी की तरह टेलो और डबल बेस, हाई बेस जिसको बोलते हैं, वो सब वेस्ट इंडियन जैसे दिखते जो हैं वो डबल बेस वही लोग बजाते थे क्योंकि वो टेलो से भी और भी बड़ा साइज का होता, खड़े खड़े जो बजाते हैं, बाद में बेस की ज्यादा बजने लगा, पहले तो डबल बेस बजता था। और पंचम दा ने 3 क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, पंचम ऐसे ठाका लगते थे देख किस लाया हूँ, तू बोलता ना हरिप्रसाद चौरसिया के पास टाइम नहीं है, वो क्लासिकल प्रोग्राम में बजाने लगे हैं आजकल, तुम्हारे जी भी नए थे और वो जो टाइम बचता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के चले जाते हैं
1: जी जी,
0: तो ये बांसुरी वाले, बांसुरी वाले आया हूँ मैं। पंचम दा फिल्म सर में अंदर सचिन देव बर्मन का एक ऐसा गाल में दोनों हाथ रख के फोटो आज भी है, ले गए और मुझे बोले तुझे नोटेशन लिखना आता है बंगला में, बोले तू नोटेशन लिखते जानिश, आमी बोला महारा मैं जानता हूँ, तूने बैकग्राउंड म्यूजिक कभी बजाया है? मैंने बोला नहीं, मैं तो एक ही फिल्म में जाया, वो कल बजाया था रविंद्र जैन का। अच्छा कोई बात नहीं, तुझे राग कहाँ जाता है? बोले खमाज सुना दे। और जब मैंने बरसी अंदाज से खमाज बजाया गले लगा लिए मुझे,
1: क्या बात है।

0: वाह, इस कहते हैं साधक, साधना यही है।
1: ये है जी। तब मुझे उस दिन मालूम पड़ गया कि उनका फेवरेट राग माज है। बाद में से जैसे मैं उसके साथ बजाने लगा तब मालूम पड़ा कि उनके आधे गाने तो खमाज ही है
0: जी।
1: उनके सिंग लोग मैरीलैंड, उसमें हारमोनियम में खमाज बाया पंचम दाने और एक गाना तैयार, ऐसे खमाज के सिद्ध पुरुष थे वो
0: जी, जी।
1: वो पीस जो पहला पंचम दाने मुझे दिया, याद आ रही है, मेरे बांसुरी से ही गाना शुरू होता
0: जी।

0: 当当当当当当当当当当当当当
1: 当当当当
0: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当और उसको मैं कुदरती गाने का जो सुर था ये जो पीस है ये पंचम को करके बज सकता है अच्छा क्योंकि उस तरह का मेरे सांसे बजाऊंगा तो नहीं आ रहा
1: जी जी
0: मेरे अंदर ना डर था अगर मेरे सामने लता जी खड़ी है तो मैं डर जाऊंगा ये शुरू से नहीं था जब ये पीस बजाया तो एक दिन में इंडस्ट्री में नाम हो गया पंचम मेरे पास आया बोले तेरा सेट कहाँ है बोले नहीं है किसके लिए बिना आना नहीं पहले जाके खरीदो तो उस जमाने में मैं उनको याद कर रहा हूँ उन लोगों को रामचंद्र धोत्रे साहब थे उन्होंने मुझसे बोला कि जैसे जैसे कमाएगा मुझे देना पूरा सेट लेके जा एक एक सुरी चुन चुन के जो सुरीला था मैं उठाया
1: क्या बात है वाह
0: और पूरा सेट जाके बॉक्स बनवाया और पंचम दा ने RDFC लिखते थे RD1 FP माने फिल्म सेंटर महीने का 25 डेट मुझे मिल गया मैं मुझे तो चांदी हो गई
1: वाह
0: अरे उस जमाने में महीने में 15,000 रुपए मैं कमाने लगा तो पैसे का जो मुझे सहारा मिला फिल्म इंडस्ट्री से पिताजी चिंतित हो गए कि अब इसका क्लासिकल कहीं छूट ना जाए ये रविंद्रनाथ के पीछे लग गया है मगर गलत साबित उनको मैंने किया मेरी वाइफ भी जानती है और उसके आने के बाद भी वो दौर मेरा जारी रहा
1: जी जी
0: जो 1980 से मैं रात को रियाज करता था तो जो लोग कहते हैं कि सुबह का राग सुबह ही रियाज करना चाहिए ये मैं मानते ही रियाज जब भी करो उसका फल मिलता है
1: जी
0: रियाज हम अपनी गलती उतारते हैं प्रोग्राम में फिर हम फाइन रेडी माल जाके पे करते हैं
1: जी
0: एक बार माँ अन्नपूर्णा देवी हमारी पहली गुरु माँ रविशंकर जी की फर्स्ट वाइफ
1: गान सरस्वती
0: हाँ माँ अन्नपूर्णा देवी से किसी ने कहा कि आप प्रैक्टिस कब करती हैं तो अन्नपूर्णा देवी बोली मेरा एक टाइम है वो सुनना चाहती हूँ तो क्यों तुम मेरा गंदगी देखना चाहते हो शौक है इनको तब तो मैं सब बुराइयों को ठहरती हूँ तो वो क्यों सुनना चाहते हो प्रैक्टिस इज ओनली एक्सपीरियंस रियाज एक अकेले में करने की चीज है जब तक आप देंगे नहीं एक लाइन मैंने लिखी तू अगर खुद को खो नहीं सकता उस दीदार हो नहीं सकता तो व्याकुल है दूध देने को दरअसल तू ही रो नहीं सकता
1: बात है
0: तो आपसे गुजारिश है कि आज के एपिसोड में आप याद आ रही है लोगों को सुन लीजिए
1: जी।

फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत रिता कार्यक्रम में अभी आप रहे थे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांची।

कला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीक सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भार की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सहाय्य निकिता लाड, लेखन आणि समन्वय रवींद्र वसंतराव लोखंडे आणि निवेदन डॉक्टर मनोज अणावकर।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी है, ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप।

फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। बिना वक्त गवाए वाधवा अपनी दो प्लेटून्स के साथ मोर्चे पर रवाना हो गए। सरहदी इलाकों की ये चौकी अपने रूखे मौसम और सुनसान वादियों के लिए जानी जाती है। वहाँ कांटेदार बाड़ के इर्द गिर्द सीमा सुरक्षा बल की चुनौतियाँ ज्यादा ही हैं। लिहाजा कहाँ बंक हैं, कहाँ खाई यानी ट्रेंचेस, कहाँ बारूदी सुरंगें बिछाई गयी, कहाँ मोर्टार्स, कहाँ कितने असलाहे, कितनी तरफ से हैशलिंग हो सकती है, इतना मुश्किल था। और फिर उतना ही मुश्किल दुश्मन सैनिकों की तादाद क्या है। इन भी खतरों को चुनौतियाँ देते अपनी चौकी को अपने कब्जे में करने, दुश्मनों को धूल चटाने और उन्हें मौत की नींद सुलाने का दृढ़ निश्चय कर कमांडेंट वाधवा आगे बढ़ने लगे। राजा मोहतम चेक पोस्ट की ये चौकी कुछ ऊंचाइयों पर बनाई गई थी जिससे शत्रु की निगरानी आसानी की जा सके। ये पोस्ट जिसमें अब ऊपर की तरफ और नीचे खाई में शत्रुओं ने डेरा डाल रखा। कमांडेंट वाधवा ने अपनी सैनिक टुकड़ी को दो तरफ से कवर देने की ताकीद की और मोर्चे पर डट गए। भारी सेना की इस टुकड़ी के आने की सुगबुगाहट होते ही शत्रुओं ने ऊपर की तरफ से कमांडेंट वाधवा और उनके साथियों पर मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। इस फायरिंग से खुद को बचाते हुए खाई की दीवारों की आड़ लेते हुए भारतीय सेना की इस टुकड़ी को सतर्कता से वाधवा ने चौकी के ऊपर की ओर पोजीशन लेने का रास्ता सुझाया। चंद सैनिकों को निगरानी और दुश्मनों को रोकने को लेकर निचले इलाके पर तैनात होने कहा और स्वयं आगे बढ़ते रहे। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा और उनके साथियों ने अपनी मशीन गन का मुंह खोल दिया और एक के बाद एक गोले दागते गए। आपसी गुत्थम गुत्था में वाधवा और उनके साथियों ने कई दुश्मन सैनिकों को अपनी संगीन का भी निशाना बनाया और एक को जिंदा पकड़ लिया। अपने असलाहों का जखीरा वहीं छोड़ दुश्मन जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। अब तक इस चौकी पर वाधवा और उन सैनिकों का कब्जा हो चुका था।

भारतीय सेना की पोस्ट पर कब्जा करने का बेइलाज सपना लिए शत्रु धीरे धीरे इसी चौकी की तरफ फिर रेंगने लगा। 10 दिसंबर की आधी रात सन्नाटा था कि अचानक फिर वीराने में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। पादवा ने समझ लिया कि वो शत्रु बस क्यों कर आएगा। इन इरादों एक बार फिर नाकाम करने की सौगंध उठाए कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए बेहिसाब फायरिंग के बीच अपने जख्मों की परवाह किए बिना दुश्मनों पर सिंह की तरह टूट पड़े। हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक मशीन गन से निकलती गोलियों को दुश्मनों पर फुर्ती से दागना शुरू किया। इधर बारूदी माइंस के फने से और दुश्मनों की फायरिंग में कुछ भारतीय सैनिक साथियों की भी शहादत हुई।

कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने दुश्मन की बलोच रेजिमेंट के 9 और सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया और बाकी बचे अपने सैनिकों को हिफाजत से लेते हुए लगभग पूरी चौकी पर पुनः कब्जा लिया। इस बात की तसल्ली की कि अब मंजिले मकसूद को हासिल किया जा चुका है। दुश्मन मोहतम चौकी से भागने की अफरा तफरी में हलाक होता रहा और कुछ बचे दुश्मनों ने मौत पक्की समझ बची चंद गोलियों को खंगाला और हमला करते रहे। वाधवा खाई के एक किनारे से दूसरे किनारे अपने साथियों के साथ वहीं डटे रहे कि कोई शत्रु अब मौके की ताक में शायद कहीं हाथ लगाकर बैठा हो। जिस लहूलुहान आंखों में फतेह का तिरंगा लहराता था, मातृभूमि की माटी को तन लपेटे इस अजीम शान वन को महफूज रखने की वो कम एक बार फिर पूरी हुई। कुछ ऐसा ही नारा था, कुछ ऐसा ही सपना फिर एक बार सच होता नजर आया। ये सोचते हुए एक फौजी के फर्ज पर आगे बढ़ते रहे कि तभी खाई में बिछाई गई बारूदी सुरंग में एक जोरदार धमाका हुआ। आर के वाधवा के जिस्म को लहूलुहान गया। मां भारती के इस शेर दिल सिपाही ने अपनी सांस थाम मादरे वतन की इस मिट्टी को सिजदा किया। आंखों में जीत का तिरंगा लहराता रहा, होठों पर फिर एक बार मुस्कुराहट बिखर गई। सभी सैनिकों ने अपनी जबाज अफसर को तुरंत सहारा दिया।

में फरीद को दाखिल करवाया गया, जहां भारतीय सीमा सुरक्षा बल जाबाज कमांडर रामकृष्ण वाधवा ने 11 दिसंबर को आखिरी सांसें और मातृभूमि की रक्षा में जी का परचम लहराते हुए देश के लिए शहीद हो गए।

एक और ऐतिहासिक जंग भारत के नाम रही। फौजी साथियों, सन 1971 की जंग फिरोजपुर की राज मोहतम चौकी पर पुनः कब्जा करने, इस इलाके में फतह हासिल कर कुशल नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, अद्वितीय रणकौशल, अदम्य साहस और अतुलनीय बलिदान के लिए सीमा सुरक्षा बल जबाज अफसर असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाड़ा को महावीर चक्र से सम्मान किया गया।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की गाथा इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जाबाज सिपाही असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की गाथा। शोध आलेख और स्वर संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजरी कांबले। दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: जब जब किसी हमलावर हमारी धरती के सीने पर को रखना था, सब चेसीतान सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की वार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने की जबी। कहा देश जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तान की भावना को शब्दों में ढालते हुए तो बंग बाबू ने कहा था,

0: सुजलाम सुफलाम मलज शीतलाम अस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
1: ये है विद भारती राष्ट्रीय विवाद दी सुरी धड़कन। आइए अब सुनते इन धनुष में साज आवाज। इसमें आज आप लेंगे दिग्या सेन और सुमित भौ की पियानो और वन पर बजा फिल्मी धुने। आज की फिल्में हैं सिरजा और मुकद्दर का सिकंदर।

0: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।
1: आज के हवा महल में प्रस्तुत है हरि मेहरा की लिखी नाटिका बहादुर शादी, निर्देशक गंगा साध माथुर।
2: बहादुर, अबे वो बहादुर के बच्चे।
3: आया साहब, आया
4: जी साहब। मॉर्निंग साहब।
2: गुंडनी के लट अलार्म बंदर, ये आज अलार्म क्यों लगाया है?
5: इतवार है और तुझे मालूम है छुट्टी के दिन मैं इतनी जल्दी नहीं उठता।
4: वो तो मालूम साहब, आज शाम को भी तो जल्दी तैयार होना है।
5: वो किस खुशी?
4: अब खुशी की तो बात है ही, हमने आपको कितने दिन पहले से बताया था साहब, आज लड़ी वाले आप ले आएंगे।
5: लड़की ले? किसकी लड़की? की लड़की? मुझे किसी लड़की वड़की से नहीं मिलना।
4: लड़की से नहीं साहब, लड़की के बाप।
5: किसका बाप? लगता है राज ज्यादा राली जो अपशना बके चला जा रहा है। चल दवा हो जाए और सोने। मुझे
4: क्या है साहब, आप भी हमारी बिस्ती खराब कर चाहते हैं। हमारी जो सवाल है साहब, वो लोग ठीक बजे आ जाए। और अभी आपको नाश्ता देकर हजामत बनवाने जा साहब, नान भी करना है और प्यार भी होना है।
5: वही पक पक पक पक कर रहे हो। ओ, किस चीज से पाला पड़ा है? कहा ना मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, तुम जाओ अपनी हजामत करा और मुझे सोने दो।
4: पर साहब आपको भी तो टाइम पर रेडी होना है साहब, और वो लोग आप मिलने आते हैं।
5: कौन? मुझे कोई मिलने मिलने आ।
4: साहब आप सब कुछ भूल गया साहब, वो लोग हमारी शादी के वास्ते आपसे बात ही करेंगे तो करेंगे साहब। और कौन आप इधर? आप तो है हमारा माई बाप, भाई बन आप ही तो है, और 10 बरस से आपके साथ है हम साहब।
5: ठीक है ठीक है, देखो अभी सिर्फ साथ ही बने, बहुत वक्त है, मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगा। तुम दबा हो जाओ इसे, जाओ बैठा हो।
4: साहब जी
5: हा? तुम यही हो?
4: साहब
5: क्या है?
4: साहब रीटा हम साहब आ जाएंगी।
5: हाँ पर ये बेवा सवाल किस लिए?
4: नहीं साहब आपको फोन दो साहब, आज वो थोड़ा दिन से आएंगी। वो साहब इसलिए कि हमने लड़की वालों को बुलाया कि हमारे साहब का अभी शादी नहीं बना।
5: ठीक ही तो बोला है।
4: तो यही तो गड़बड़ है साहब, अगर वो रीटा में साहब को याद देंगे तो क्या सेंगे? तो
5: उन्हें समझ लेना, मैंने से क्या होता है,
4: सब कुछ होता है साहब, सब कुछ होता है। हम आपको कितनी बार बोला है साहब कि तुम अपनी शादी बना लो, हमारी मुसीबत हो जाएगी।
5: हमारी शादी हो या ना हो उससे तुम्हारी कैसे मुसीबत हो जाएगी?
4: वो लोग अरे सीधे शादी पर आदमी साहब, बड़े लोगों बात नहीं समझते। हमारे मुल्क में शादी बिना लड़की किसी के घर नहीं जाती। मैं हाथ जोड़ा हूँ साहब, तुम साहब उनको मैम साहब को फू कर दो।
5: वो भगवान करो, सोने दो मुझे, गेट आउट।
4: हाँ साहब हम तो गेट आउट होता है साहब, पर सोने पहले हमारी बात कुछ थोड़ा और करो साहब।
2: बहादुर, अरे भाई बहादुर दरवाजा खोलो यार।
5: लंबी इच्छा हजामत कराने गया
2: है।
5: अरे रीटा तुम क्या बचा है?
6: डार्लिंग तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
5: हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अचानक ये सब क्यों? और फिर तुम, मेरा मतलब मैं तो तुम्हें 10 बजे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
6: थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। बादुर ने फोन किया, शाबाद देर से उठेगा, मैम साहब तुम भी देर से आना। मैंने पूछा क्या बात है तो बोला साहब की तबीयत रात को जरा ठीक नहीं थी इसलिए देर से लगी है। कहाँ है बहादुर? मुझे तो डर दिया उसने।
5: 9:30, अरे वो लोग 10 बजे आएंगे।
6: कौन लोग? तुम्हें ममता डाले, आज मैं सारा दिन भर रहने का प्रेम है, तुमने 10 बजे का अपॉइंटमेंट से दे दिया।
5: भाई मैं नहीं, बहादुर ने।
6: बहादुर ने? ये बात आज को मिस्टर स्पीकर बना है। देखो डार्लिंग अब ज्यादा परेशान ना करो, हमारा संडे सब स्पॉइल हो जाएगा। तुम जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, मैं चाय लाता हूँ और 10 बजे से पहले।
5: अरे भाई सुनो, ऐसा नहीं हो सकता।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है की दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला गाने लिया फिल्म फा पोस्ट निकला हीरो से। इसे गाया अरिजीत सिंह ने, गीत अमित भट्टाचार्य का है, संगीत

0: जिस थे इंसान का नसीब मोहब्बत चमरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमक है चाहने वालों के पास से। मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय की अंधेरी ग्यारों में। ऐसे ही नया गीत का कार्यक्रम
1: याद
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अमूल यादें
0: सुना भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सूर्य धड़कन विविध भारती पर।
2: चितो का शेभाग अराल के उस पार

चित्रालवाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया फिल्म लज्जा। इसे कहे के नहीं, गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का,

0: भागती भरती जिंदगी में अपनी सेहत से हर जूझ रहा है। पीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेंट आता है एकदम से तो कोलेक्ट्रोस्कोपी आई भी आई हुआ है, अदरवाइज हम लोग ही कर सकते हैं, नेचुरल वे से करते हैं। पहले का डाइट ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्रोमी फेंटे थे, अभी लेट्रोस लेट्रोजॉल, मल्टीविटामिन, विटामिन 3, ओमेगा 3 और क्या कम है दिख जाता है में, कुछ डिफेंसियस है बिटवे हो, ये सब लेकर
0: सुनिए 6 जुलाई सिनेमा शाम 6 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुनते हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म गाना ऐश किंग और शशा पाठी की आवाजों में, गीत राफत मूत और तनिष्क पाठी का है, संगीत दिया तनिष्क पाठी ने।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले वर्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा

0: कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात। ओपेक ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल उत्पादन बढ़ाने पर सहमत व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्थ का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माही और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ सो हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, पुणे, पलघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रेल संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के हिस्से गिरने की 8 घटना दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय व्यक्ति और 18 वर्षीय युवक मौत हो गई। भारी बारिश के कारण थाने और अलगर जिले में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण राष्ट्र की कई नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित दोषी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जल स्तर बढ़ जाने से फंसे 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा दुबे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडा समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रूपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सबसे जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी में मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और साइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोलारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अड़ानी समूह के निदेशक जीत रानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से तरफिरोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान से पश्चिम एशिया की आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसर पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर

0: उनके आकलन की साझा करने की सराह की। डॉक्टर जनकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोह, प्रदर्शनी और पूर्व वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतार सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप बनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार स्थितियों की समीक्षा के आयोजित वर्ष बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। अगले निवेशकों की बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया लाल सागर में यमन के तट आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोह के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेसी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के दावकर्मियों को अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, 5 दिन ही विकसित भारत ही राम योजना एक साथ पूरे देश लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 करोड़ ज्यादा की राशि, 2,86,000 खातों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के समीक्षा बैठक करना और प्रमुख योजनाओं प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल

0: पर विश्व पहचान दिलाने वाले विश्व विख्यात भवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीज बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका निधन कला और संस्कृत जगत के एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले तीन दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पितृ गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा यह तीर्थ यात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दी है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल 80वें संस्करण भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रहने का काम करता है। एक साइकिलिंग पॉल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखते हैं। साइकिलिंग ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों हम साइकिल करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन लॉर्ड्स ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अपने मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और इस मई के लिए अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए लागत वाले रक्षा निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त की अनुमति दीजिए। आप सुनते रहिए विद भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकारी क्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भाति के पास है मिसाल हस्तियों का अनमोल खजान।
1: चंदा मामा दूरी हुए काए भूर की
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 में बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया कहने के यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मैं वहाँ अक्सर गाना गाने

0: सुनाकर दो रंग चंदा मजदूर के पूरे पकने दूर के मैंने उसकी ट्यून बना ली चंदा मामा दूर हुए पकाए दूर के
1: खाए थाली में मुन्ने कुथे प्याली में।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।
3: आज के फनकार

फिल्म स्याही का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा गाना शुरू कर दिया होगा कि आज की फनार कार्यक्रम आज इस प्रथा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर अंदाजा गाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पी संतोषी बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम।

निर्माता निर्देशक और गीतकार पी संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं था। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गुंद नेहलानी की फिल्म अर्ध सत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी।

और राजकुमार सतोषी इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घल। सनी देओल मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई बुना और उन्हें अपनी पहली निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इस तरह के किसी विषय दोहराए, लेकिन अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय बनाई। ये फिल्म 1993 में आई मिनी।

अमीनी के बाद राजकुमार संतोषी अगली बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर कि उन्हें उम्मीद नहीं जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रथपट पर जलाए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घटक। साल 1998

कुमार संतुष्टि की खासियत ये कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

फिल्म द लैंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खान।

वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी निर्देशन पर्दे पर नजर आए। इसके बाद अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म हल्ला बोल।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म लेकर आए जिसका नाम था अरब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: आज का कार्यक्रम केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतुल पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनार।

जाएगी कि सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। इश्क के साथ जैसे चकई है उसी की धुंध, आसमान जैसे बस रहा है और दुनिया की

जितने उदास लोग हैं ये आसमान उनका साथ दे रहा है, ये आसमान उनकी जबान में कह रहा है अपनी बातें। ये बारिश नहीं है, ये कुदरत का दुख है।

कभी कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, जैसे अनगत अनजान चीजों वाली भीड़ भी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है।

कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर लाती हैं, चीजें जिन्हें आप दुजान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक होती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सबच बेहतर है, इतने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है के दिल का। मुस्कान नहीं आंसू भी बयांते हैं दिल की हालत।

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबा हुआ सूरज, इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: आज के छाया गीत में थे मोहम्मद रफी चंद उदास नगमे, फिल्मों के नाम।
1: आपके पहलू में आकर रो दे आपके।
0: नीरा साया, राजा मेहली अली खां, मदन मोहन।

0: जब फूल खिले आनंद बख्शी करंजी आनंद जी
1: देशों में हर दम मेरे इश्क का सितारा
0: द्वदन शकील बदायूं रवि
1: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है
0: राही हसरत जयपुरी शंकर किशन हमदम मेरे दोस्त आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आज का ये गीत इतना ही इजाजत दीजिए मुस्कान को।

0: सुनिए
1: करिए सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखी को अब बात कहने का। सखिया उन पर हम सताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों पर।

के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसार होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए पसंद गाने।

0: विविधा के समस्त सवालों को जयंत पात्रिका
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। जयंत जी, आज विविधा आरंभ में इच्छा है कि हम हिंदी की एक बहुत ही सुंदर रचना है, सुगम संगीत की रचना है, कंठ है गीता दत्त का और संगीत है पंडित निखिल घोष का। एक ऐसा गीत जो हम श्रोता आम तौर पर हमारे में
2: कल बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मछुआ को अगले 5 दिन तक समुद्र में जाने की सलाह दी गई है। वाराणसी में 30 वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कुछ जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे लिए रनवे संचालन आस्था

0: रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवारें या मकान के कुछ हिस्से गिरने की आंकड़े दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अनि समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़े। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के नए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित अली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत आनी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स ने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को 151 रन लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इस साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीत शुक्ला। Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning, and gusty winds. The Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab, and some parts of Rajasthan during the next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day. Scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab, and Chandigarh during the next 2-3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continue to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours. Authorities advise people to remain alert and avoid venturing in vulnerable areas as the heavy rain is expected to continue. In Gujarat, IMD has forecast heavy rainfall over the next 7 days. A red alert for extreme heavy rainfall tomorrow has been issued for Nang, Navsari, Valsad, Bhagar, Amreli, Gir Somnath, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli tomorrow. Fishermen have been advised not to venture into the sea for the next 5 days.

कल्पना को तो चक्कर डाल दिया है। आपसे हमने किसी को चंद्र ही कह दिया तो शायद आप सैंडल न उठा ले, क्योंकि चंद्रमा के इधर की खुली तस्वीरें अखबारों में खूब छप चुकी हैं। आदमी ने कमाल किया है, पर सवाल ये है कि वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके करना चाहता है। धरती उसे ही नरक नहीं हुई है, चंद्रलोक से स्वर्ग जाएगा। फिर उस निर्माणकर्ता क्रिएटर सर्जनहार का ख्याल आता है कि क्या आदमी उसका मुकाबला कर सकेगा? क्या हजारों साल मेहनत के बाद भी आदमी ने हजार रंगों वाली तितली का पंख तैयार किया? क्या भोर की किरणों के साथ नाना प्रकार के रंगों में बिखरने वाली खूबसूरतियां धरती के ऊपर पैदा की? वो सिर्फ खोज कर रहा है और करता चला जाएगा, और हमें उसकी खोज पर गर्व भी है, लेकिन वो केवल खोज ही करता रहेगा। आज इसमें आता है कि ये कौन चित्रकार है नजर नहीं आता, जिसकी तूलिका नजर नहीं आती, लेकिन जिसके हजारों रंगों के फूल और हजार रंगों से रंगी हुई ये धरती नजर आ रही है।

ये वीरांगना की रिस का भाव है, जिसका पति महाराणा प्रताप राजस्थान की वीरता का प्रतीक, जिसने शत्रुओं के सामने घुटने नहीं टेके, बच्चों को घास की रोटी खिलाना पसंद किया, प्रताप पत्नी विरह का गीला गीत नहीं गाती, जिसकी छाती में पति की प्रतिज्ञा का व्रत है उसे निभाना चाहती है, इसलिए पति को आदेश न देकर उसके घोड़े चेतक को आदेश दी है कि तुम्हारे ऊपर जो सवार है उस मातृभूमि की रक्षा करने की आग है वो मेरा सुहाग है, मेरे उस सुहाग की तुम रक्षा करना, ये तुम्हारा धर्म है।

अब सुनिए उस नारी का वर्णन जो कवियों और शायरों को कभी नहीं मिली, इसकी वे केवल कल्पना ही करते। ये गीत मैंने हमारे व्यवसाय के मुख श्री शांताम जी के आदेश से लिखा, हमारी धरती के महाकवि कालिदास के महाकाव्य अज्ञान शकुंतल पर कलम चलाने पहले सोचना पड़ा शब्द कैसे हों और भाव कैसे हों। मैं छोटा सा प्रयास किया, शायद आपको पसंद आए। सूरज की रोशनी को धुंधलाने वाली शकुंतला की ये गत बसंत के समान सुंदर दुष्ट गा रहा है।

वैसे हमारी संगीत की दुनिया में अधिकतर तर्ज पर बोल लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरे इस गीत के बोल पहले ही सिले हुए थे, जिसे मैंने लक्ष्मी प्यारे को चित्र सती सावित्री के दिए, जिसकी तर्ज उन्होंने जितनी सुंदर बनाई उतने ही मधुर कंठों से लाजी और मन्ना ने गाई। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, तुम प्रणय के देवता हो, मैं समर्पित फूल।

0: क्षमा मैं भूल हूँ। एक ही पंक्ति में पंडित भरत व्यास ने ऐसे आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दिया। बहुत सार गर्भी पंक्ति लग है मुझे ये गीत की।
1: क्या बात है विशा जी, फिल्म को एक कैनवास मान लिया है
0: जी,
1: तो उसकी कहानी लिखने वाला, गीतों को रचने वाला जो है वो उस फिल्म की एक आउटलाइन बनाता है, तस्वीर बनाता है और उन तस्वीरों में रंग भरते हैं संगीतकार, बाकी का कार, और इस पूरी तस्वीर के जो जिम्मेदार होता है वो उसका रचयिता होता है असल में फिल्मकार।
0: जी हाँ, बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी फिल्म को बनने की प्रक्रिया की बात,
1: शायद इसीलिए फिल्मों को पिक्चर कहा जाता है।
0: जी हाँ, और एक ऐसे ही फिल्म के अमर चितेरे, उन्हीं की बात हम आज करने जा रहे हैं श्रोताओं। 6 जुलाई को जिला स्मृति दिवस, जी हाँ, महान फिल्मकार चेतन आनंद, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर यानी निर्देशक और साथ में अभिनेता भी, एक ऐसे महान फिल्मकार चेतन जिन्होंने सरोकार सिनेमा रखा, शायद सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति सिनेमा मिली वो चेतन आनंद जी की नीचा नर थी।
1: जी बिल्कुल, इसका आपने मना जी 1946 की बात है, कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रामी अवार्ड जो दिया जाता है वो नीचा नगर मिला था।
0: जी हाँ, और नीचा नगर पहली फिल्म थी अभिनेत्री मिनी कौश की, और पंडित रविशंकर की ये पहली फिल्म थी एक संगीत निर्देश की हैसियत से। श्रोताओं, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सिनेमा को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने वाले चेतन आनंद जी सबसे बड़े भाई थे आनंद परिवार के। जी हाँ,

0: देवानंद साहब और विनय आनंद जी के बड़े भाई चिदानंद पिशोरीलाल आनंद के सुपुत्र।
1: 3 जनवरी 1921 को लाहौर उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही पुराणों और वेदों की पढ़ाई उन्होंने की
0: जी।
1: और अंग्रेजी में उन्होंने एमए किया। बाद में उन स्कूल में इतिहास पढ़ाया करते थे और इसीलिए इतिहास में अधिक रुचि होने के कारण उन्होंने पहला स्क्रिप्ट जो लिखा अपनी फिल्म के लिए वो सम्राट अशोक पर केंद्रित था
0: और उसे उन्होंने दिखाया था अपने जमाने के मशहूर डायरेक्टर फनी मजूमदार जी को और बाद में फनी मजूमदार जी ने ही अपनी एक फिल्म में कास्ट किया था और उस फिल्म का नाम था राजकुमार जो 1944 रिलीज हुई थी। के बाद चेतनानंद जी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा जुड़ गए जिस बारे में हम अभी बहुत अच्छे से जाने। उस जमाने के वो सभी कलाकार इप्टा से जरूर अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए थे
1: जी। 1949 में अपने भी देवानंद के साथ मिलकर उन्होंने नवकीर्तन फिल्म इंटरनेशनल की स्थापना की।
0: बाद में चेतनानंद जी ने हिमालय फिल्म्स की स्थापना की और उसके बाद जो उनका पूरा संसार है उसके बारे में हम सब जानते हैं। कमाल की फिल्में चेतनानंद ने बनी और हमारे सामने सभी फिल्में एक उदाहरण प्रस्तुत की हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण फिल्म जिसका नाम लेना चाहेंगे वो थी हकीकत और हकीकत के ही एक गीत की मुझे वक्त बहुत याद आ रही है
1: वही जो लता के स्वर में
0: जी हाँ उस गीत को सुनते हैं और फिर आगे रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे हम अपने श्रोताओं को।

0: हकीकत का ये गीत हमने ना हकीकत हीर रांझा हंसते जख्म हिंदुस्तान की कसम जली फिल्म बनाने वाले चेतन आनंद साहब।
1: और चेतन आनंद साहब के बारे में एक और खास बात मैंने जी आपको बताएं, श्रोताओं जान लिए, मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना साहब को इंट्रोड्यूस करने वाले पहले निर्देशक थे चेतन, और वो फिल्म थी आखिरी खत। हालांकि राजेश खन्ना साहब की पहली लीज्ड फिल्म थी राज।
0: अपने जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब को उन्होंने ढूंढा था एक एक्टिंग कॉम्पिटिशन के दौरान, और इस तरह से हमारे सामने अब जमाने के मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना आए। श्रोता, हम आपसे इतनी बात रहे हैं चेतानंद साहब, हमारे पास उन रिकॉर्डिंग और रीन मानी उस आवाज को सुनकर हम सिहर से जाते हैं, क्योंकि इतने महान फिकार की आवाज हमारे पास है। ये हमारे साथ अभी सुनिए चेतानंद जी द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम रिकॉर्डिंग।
2: फिल्म हकीकत की शूटिंग के दौरान में कश्मीर लद्दाख की वादियों में कई जवानों से मुलाकात का मौका मिला।

में से बहुतों ने इस फिल्म के बनाने में मुझे मदद दी। लेकिन शूटिंग होने के बाद मुझे लद्दाख से अचानक आना पड़ा और जिन भाइयों ने मदद की थी उनका मैं उस वक्त शुक्रिया अदा न कर रहा और न उसके बाद मुझे शुक्रिया करने कोई मौका मिला। आज अगर मैं आवाज तक रही है तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। प्रोग्राम शुरू मैं उस गांव से करूँ जिसे मैंने चुशूल के रास्ते में 17,000 फुट की बुलंद पर साला पास से गुजरते हुए एक फौजी भाई को गुनगुनाते हुए सुना। हमारी जीप को एक मोड़ पर अचानक फौजियों ने बंदूकें तन कर रोका और कहा, जब तक आप हमारे साथ चाय पियोगे आगे आने की इजाजत नहीं मिल सकती। आपसे बहुत से भी इस वक्त 2000 मील तक गली हुई हिमालय की सर्दों में बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे। यकीनन बीवियों और महबूबों की याद अक्सर आती होगी।

हर शख्स की किस्म में ऐसा नहीं था कि कोई इंतजार करता रहे। ऐसे हैं जिनके दिलों में उमंगें तो जागती हैं, लेकिन उनको अपना वाला अभी मिला नहीं। तन्हाई और इंतजार के कई होते हैं, कई मूड होते हैं। एक रूह खयाम साहब ने साहिर लुधियानवी के बुल लेकर मुकेश और आशा की आवाज के जरिए फिल्म फिर सुबह होगी में यूं जाहिर किया।

0: नेतृत्व में देश के उन बहादुरों की आवाज जिन्होंने लद्दाख और नीफा में फिर कश्मीर और सियालकोट लाहौर के ट्रों पर देश की रक्षा के लिए अपने जाने कुर्बान की।
1: चले,

0: अब तुम्हारे हवाले बन सकूं।
1: इस बात कहना मुनासिब नहीं, इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद।
2: जयंत जी,
3: जी
2: आप जब राजेश खन्ना साहब की बात कर रहे थे और फिल्म आखिरी खत की बात कर रहे थे, तब एक चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी और वो ये कि जब हम भारतीय सिनेमा के नक्षत्र इस श्रृंखला को बना रहे थे, उस वक्त एक एपिसोड ने चेतनानंद साहब पर बनाया था और हमारी टीम को एक मौका मिला था कि हम उनके बंगले पर जाएं और वहां हम पहुंचे, उस जगह को देखा जहां हिंदुस्तान की कसम का एक गीत शूट हुआ था। वहां उनके बेटे केतनानंद साहब से हमने बहुत सारी बातें की थी। तब उन्होंने एक जिक्र किया था फिल्म आखिरी खत का।
3: अच्छा।
2: उस फिल्म के बारे में सभी जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे पर ये फिल्म बनी है जो अकेला सड़कों पर घूम रहा है, उसकी माँ नहीं है इस दुनिया में और वो अपनी माँ को तलाशते हुए घूम रहा है। बहुत ही हृदय स्पर्शी वो फिल्म है। किस तरह से उस फिल्म को बनाते वक्त चनानंद आपने टेक्निक का इस्तेमाल किया था, कैमरा किस तरह से रखा था, किया था, क्योंकि बच्चे शूट करना मुश्किल होता है, तो उस बारे बड़ी जज्ब बात उन्होंने बताई, वो भी अपने श्रोता को सुनवाते।
4: आखिरी खत एक्चुअली मैं कहूंगा कि ये फिल्म मेक की फिल्म है। ये स्टूडेंट्स को स्टार्ट करना चाहिए किसी फिल्म में कैसे बन सकती, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल। छोटे से 15 महीने के बच्चे को सड़क पर छोड़ो और भी बॉम्बे शहर जैसे सड़क पर छोड़ देते इसको और छुपी वो प्रिंटेड कैमरा के उसको फॉलो करते थे। ये ऐसे शूट किए फिर उन्होंने और कैमरा को कलम बनाया उन्होंने, यू नो, कोई रिटन स्क्रीन प्ले नहीं था कि अच्छा ए पॉइंट से बी तक जाएगा, उसको छोड़ देते। वो कभी यूं कर देखता था बलून वाला आया आगे तो धड़ रोड क्रॉस कर देता, पुलिस वाला ट्रैफिक रोक देता था उसके लिए। तो ये सब चीजें हैं जो अपने आप स्पॉन्टेनियसली हुई। एक दिन वो एक्सेप्ट करते कि मंदिर में घुस वो शॉट है फिल्म, फिर उन्होंने
5: ट्रैक पर भी गया,
4: नहीं वो लैंड था, छोटी चीज लैंड थी, वो ट्रैक पर ले जाना, वो सो जाता है, फिर वो एक कल लड़ाई कराया, वो स्लीपिंग टैबलेट जो आ जाए उसको भूख लगी है, ये प्लान है, छोटी छोटी चीज लैंड, बट अ लॉट ऑफ स्पॉन्टेनियस शूटिंग, जो वो बैम्बू खंभों में जो चल रहा है, रो रहा है और सड़कों चल रहा है, कोले वाले पीछे चला गया है, दूध की बोतल उठा के पी जाता है, ये स्पॉन्टेनियसली चीजें उसने बचने खुद किया ये सब। तो वो कहानी लिटरली जैसे जैसे दिन जाते वैसे वैसे बनी है स्पॉन्टेनियस सिनेमा का।

0: रिकॉर्डिंग को सुन के बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है मनीषा जी, और इसी अनुभव को हम आगे बढ़ाएंगे और एक और कलाकार की बात करेंगे।
1: बहुत लोकप्रिय गायक जी श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अज़ीज़ साहब के।
0: सैयद मोहम्मद अज़ीज़ नबी
1: जी
0: इनका पूरा नाम था, प्यार से सभी इन्हें मुन्ना भाई कह के बुलाते। और मोहम्मद अज़ीज़ साहब का जन्म 2 जुलाई 1954 को 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। और चूंकि मूलतः वहीं के थे तो बहुत बंगाली और उड़िया गीतों में इनकी आवाज सुनने को मिलती है।
1: श्रोताओं, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सर्वाधिक गीत मोहम्मद अज़ीज़ साहब ने जो गाए हैं वो उड़िया भाषा में गाए हैं, और भी देश की लगभग 17 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। कमाल की बात है ये। और एक अलग रथयात्रा के गीत किस हैं?

0: मोहम्मद साहब के बारे में और कुछ थे अपने श्रोताओं को बताएं। मनीषा जी, बचपन से रफी साहब बहुत बड़े बाने थे, बहुत फैन थे, और शुरुआत तो ऐसे हुई कि कत्ता में एक रेस्टोरेंट में वो गाया करते थे और उन्हें सबसे पहला मौका मिला वो अनु मलिक साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म मर्द का गाने के लिए।
1: मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन के लिए आवाज देना और वो भी पहले ही ब्रेक में, ये बहुत किस्मत वालों की बात होती है।
0: हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते होंगे मर्द टांगे वाला वो जो गाना बहुत ही हिट था उन दिनों, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के वो बहुत करीब थे।
1: जी हाँ,
0: और उनकी आवाज के बारे में कहा जाता है कि वो रेंज बहुत ज्यादा थी, बहुत ऊंचे सुर तक गा सकते थे और बहुत ही उम्दा कलाकार। और कोई कलाकार बहुत अच्छा तभी होता है जब वो एक बहुत अच्छा इंसान होता है,
1: बहुत सहज, बहुत नम्र और बहुत जल स्वभाव।

मुन्ना अजीज यानी हमारे और आपके अजीज मोहम्मद अजीज साहब की एक रिकॉर्डिंग हमारे पास जरूरत हो, जब विविध भारती स्टूडियो में थी तो बिल्कुल उसी सहज और सरल से उन्होंने बात की थी, जिस सरलता से वो ऐसे ऐसे गीत गाए कि आज भी हमारी याद में बसे हैं। उनसे बातचीत की थी ममता सिंह ने, तो उस रिकॉर्डिंग को आज हम सुनवाते हैं और याद करते हैं बहुत लोकप्रिय गायक मोहम्मद अजीज को।

0: मोहम्मद अज़ीज़ साहब, वे भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे याद करने का, मुझे बुलाने का।
0: आप कैसा लग रहा है भारती में कर?
1: भारती के साथ तो बचपन रहा है हमारा, बचपन से इतने प्रोग्राम, तब तो रेडियो ही थे। विद भारती फख्र महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में रेडियो सुनता और आज विद भारती में बैठा हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
0: आपका बचपन ऐसा था?
1: मैं कलकत्ते का ही हूँ, वहीं पैदा हुआ, पल बढ़ा और बड़ा ही मजहबी किस्म का खानदान है हमारा, रिलीजियस टाइप। आधा लोग बिल्कुल एक ग्लैमर की दुनिया कोई लेना देना नहीं
0: जी।
1: और सबका इरादा था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, कोई अच्छा बड़ा ऑफिसर बनूं या कुछ भी, लेकिन मेरा रुझान था कि गायक बनूं। क्योंकि अक्सर जब मैं कभी भी स्कूल फंक्शन में या कहीं भी गाता, मुझे अप्रिसिएशन बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह मिलता था
0: जी।
1: क्योंकि मुझे म्यूजिकल सेंस बचपन से बहुत रहा, आम तौर से लोग बहुत ज्यादा सीख कर गाते हैं, उस तरह मुझे गॉड गिफ्ट था। मुझे इतनी समझ थी कि आपके गाने को शुरू करना है, कैसे खत्म करना है, उस हरकत क्या होनी चाहिए, क्या होना, इस तरह बचपन से मुझे काफी सेंस, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं ना एक दिन खुश कर पाऊंगा,
0: कामयाब होंगे
1: जी। तो पढ़ाई लिखाई में मैं दिल ने था, बड़ी मुश्किल से मैंने फर्स्ट ईयर बीकॉम तक पढ़ाई की, खींचा था करके।
0: अच्छा।
1: घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन जब मैं उधर गाता था और उनको, मेरे वालिदैन को पता चल रहा कि उसने फला जगह गाया है, कमाल हो गया है, हो गया, तो जाहिर है उनको खुशी होती है, लेकिन वो करियर कुछ नजर नहीं आता ना। और वैसे भी बॉम्बे आने से पहले तो किसी भी दूसरे शहर में कोई स्कोप तो होता नहीं, तो मैंने फिर भी काफी साल तक इस प्रोग्राम के बाद अपना ग्रुप भी बनाया। बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही हमारी शुरू से, एक मिड क्लास फैमिली, बहुत सारे भाई बहन और वालदेन की जिम्मेदारी, ये सब थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब भी हो वक्त बर्बाद नहीं करना है। बॉम्बे आने के बाद फिर वो साल स्ट्रगल रहा और 84 में मुझे कुछ छोटी मोटी फिल्म के गाने मिलने लगे, कुछ 8 गाने गाऊंगे कि अचानक ब्लास्ट हुआ। यानी मुझे अचानक सुबह में किसी ने आके कहा भी, चलो तो अल्लू मलिक के यहाँ जाना।
0: किसने कहा?
1: एक लड़का है, आज भी मेरी दोस्ती है, पप्पू कश्मीर, उनका मिशन था वो। तो मुझे सुबह तो उठा के लिया।
0: अच्छा।
1: रिहर्सल करवाने के लिए 3 बजे से आपकी रिकॉर्डिंग है फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन।
0: अच्छा।
1: तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, कह रही ये तो कमाल हो गया। मुझे कहा कि भाई आप वो इस तरह गाना है कि बस गाना या नहीं तो गाना डर जाएगा। खूब रिहर्सल करके मैंने 3 बजे से गाया, तो रिस्पॉन्स इतना अच्छा था क्योंकि उनको लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। लाइव रिकॉर्डिंग में एक बात अच्छी थी, वही म्यूजिशियंस दूसरी जाते थे और जिकर, हाँ, कि अरे फला एक लड़का है, उन्हें कमाल गाया। तो जैसे हम मलिक जी के से बोला कि यही मिशन गए लक्ष्मी जी के यहाँ, पंचमदा के यहाँ, कल्याण जी भाई के यहाँ, तो इस तरह फैल गई। यानी फिल्म ये गाने रिलीज होते पहले ही मैं बहुत बिजी हो गया, फिर लाइन से जगह गाने लगा।
0: जब मोहम्मद रफी साहब पर एक ना था, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, तो इससे मिला था
1: कमाल। मैं पहले से बताऊं बात,

0: मैं बचपन से ही मोहम्मद रफी साहब का बेइंतहा फैन रहा हूँ और हूँ, आगे भी रहूंगा,
1: रहेंगे।
0: वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मतलब समझ लीजिए मैं वो हर तरह से अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि जाहिर है कि बचपन जिनके गले आकर मुझे नाम मिला, इज्जत मिली, तो मेरे सब पहले गुरु वही है। आज भी जो भी थोड़ा नाम कमाने के बाद भी कभी बार उनके कुछ खास गाने कभी सुनता हूँ अकेले बैठे तो आंसू आते हैं। एक दिन एक मीटिंग हो रही थी लक्ष्मी जी के घर, लक्ष्मी जी प्यारी बैठे थे, प्रोड्यूसर थे अपने पप्पू और फाइट मास्टर, डायरेक्टर शिलाल नायर। की सिचुएशन निकली है 30 जुलाई है, मोहम्मद रफी साहब की बर्थडे है और उसमें अमिताभ बच्चन पिक्चराइज होना है।
1: अच्छा।
0: कि रफी साहब की याद में कोई गाना गाए, सिचुएशन ऐसी बनी। अब सब लोग बात करके इस गाने को गाएगा कौन, तो ये मेरी देखिए खुशनसीबी कही है या रफी साहब की छत थी क्या थी, कि सबों ने एकजुट होकर कहा कि मोहम्मद रफी साहब के ऊपर गाना चाहिए, मुन्ना गाएगा, जो मुन्ना थे ना
1: जी
0: प्रिट में, बट मोहम्मद रफी मेरा नाम, तो बोलते कि ये गा वही गाएगा। तो जब मुझे बुलाएगा और मुझे गाने का मौका सुनाएगा कि फनकार तुझसा से बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि देखो मेरी मोहब्बत और मेरी चाहत कोई सच्चाई थी, ये गाना गाने का मौका मुझे मिला। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ 11 बजे शुरुआत को रिकॉर्डिंग और ये 2:30 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग चली है, तो जब गाना रिकॉर्ड होने के बाद ये सारे लोग रो रहे थे गाना सुनकर, इवन म्यूजिशियन जो अक्सर क्या होता है कि वो गाना सुनते भी नहीं पैसा लेके ले जाते हैं, तो रोज का काम होता है, वो सारे के सारे लोग गाना सुनते और रो रहे थे, एक माहौल ही सन्नाटा छा गया।

0: अमिताभ बच्चन साहब, क्या रिएक्शन होता जब आप गाते थे तो?
1: बहुत इन्वॉल्व गाना बनता था, कुछ भी हुआ आते थे, लक्ष्मी जी के यहाँ सुनते थे, कुछ अपनी तरफ से भी कुछ आइडिया देते थे।
0: जी, कोई खास सलाह सुझाव दिए जो आपको पसंद आया?
1: मेरी बहुत कम बात करते हैं
0: जी,
1: बस हल्की हल्की स्माइल देते हैं, बस उसी हम लोग फिदा रहते हैं और क्या
0: जी।
1: और हमको नमस्ते कहने नहीं देते कभी, पहले ही वो नमस्ते कहते लोगों को
0: जी,
1: कभी मौका ही नहीं देते कि कोई उनको सलाम करे। बहुत सारी बातें हैं मिला के अमिताभ बच्चन है।
0: अच्छा, और किन किन कलाकारों के लिए आपने कहे?
1: आपको बताऊं, मैं दिलीप साहब और अमीर जी से लेकर शाहरुख खान तक सबके लिए गाना गाया मैंने, और मैंने नौशाद साहब, शंकर जी से लेकर आदेश श्रीवास्तव सबके लिए गाने गाए, और लता जी से लेकर सारिका कपूर तक के साथ गाया
0: जी, जी।
1: कोई जिंदगी में कोई अरमान बाकी नहीं है, सब कुछ हो गया जी, बिल्कुल।
0: अच्छा अजीज, सब शाह साहब से जुड़ी हुई बात है, वो ये किसी शो में आपने उनके साथ परफॉर्म किया था?
1: मैं एक दफा गया था बिहार, तो वहाँ पे एस डी बर्मन मेमोरियल अवार्ड फंक्शन था
0: जी,
1: उसमें नौशाद साहब को चीफ गेस्ट बुलाया गया था। ये बात है 1976 की, तो वहाँ मैं नौशाद साहब को देख के एकदम खुशी से पागल हो गया। पहली बार

0: जी
1: ऐसे आदमी को देखा जिनका मैं बचपन से बड़ा फैन, और वहाँ मैं तू गंगा की मौज में और ये बैजू बावरा के गाने गाए, नए लड़ी है सब, बिहार सिचुएशन देखकर पता नहीं उनको अच्छा लगा क्या लगा, लेकिन मुझे इस बात सास हुआ उनको जरूर अच्छा लगा होगा। ये कब, जब मैं उनसे 86 यहाँ बॉम्बे में मिला, देखिए कहाँ 76 कहाँ 86, उन्होंने मुझे याद दिलाया तुमको पता है मैं तुम मुझसे मिल के हो। हाँ, क्या मैं 76 में मैं चौंक गया उनकी याददाश्त पर, और उनका बड़ा पन यही है कि मेरे जैसे अदनायक गायक को उन्होंने कैसे पहचान लिया। साथ साथ जैसे संगीतकार को किसी गाने में देखा भी हमारे लिए एक सुना था, फिर एक मौका ऐसा आया कि नौशाद साहब ने मुझे गाने भी गाए, फिल्म आवाज कहाँ है और गाने के बोले रुलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी दे वाले।

0: अब आपके नॉन फिल्म एयर्स के बारे में बताइए।
1: बहुत साल पहले विनर सीखला था मैं कशिश गजलों का, सरदार साहब अनु मलिक के पिताजी, उनकी कंपोजिशन में गजलों का एल्बम निकला था, वो बहुत पॉपुलर हुआ था उन दिनों। एक फीस ने निकाला था बेवफा तेरा मासूम चेहरा, और भी बहुत सारे एक एल्बम निकला था खुशबू, फिर एक टीसरी निकली जैसे देखा चेहरा तुम्हारा, इस तरह बहुत सारे एल्बम निकले हैं। एल्बम 60-70 है वालियों के,
0: जी जी,
1: नात मनकबत जो होता उसे मैंने इतने टाइप के गाने गाए आपको मैं क्या बताऊं। मैंने गुरबानी का एल्बम किया
0: जी,
1: लोगों ने बहुत पसंद किया। जय हनुमान में जितने मेल हुआ है, जय हनुमान सीरियल आई थी संजय खताब की, उसमें जितने भी मेल हुए थे वो सब मेरी है।
0: अच्छा,
1: वो सारे हनुमान चालीसा सारा टाइटल भी आपने सुनगा, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम है ना, वो सब मेरे गाए हुए। इतने मुश्किल पूरा चौपाइया जो जो थे वो सारे वो सब मैंने गाया। मैं इसीलिए रविंद्र जैन साहब बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे जय हनुमान और महाभारत और रामायण सब में उन्होंने मुझे गवाया। राज कपूर साहब की फिल्म में मुझे गवाया।
0: गानों की लंबी फेहरिस्त, इतने ढेर सारे गाने हैं कि कौन कौन से गाने सुनाए कौन कौन से नहीं।
1: उस जमाने में यानी 80s में 600 फिल्मों का लिस्ट मेरे पास है, और एक एक फिल्म में 3-3-4 गाने हैं।
0: अच्छा,
1: जैसे एक फिल्म में 15 सिंगर होते हैं, अभी 10 बने करके ले गया दिल तुमने 4 सिंगर, तो उस जमाने में ऐसे ही होता था, एक हीरो के लिए एक ही सिंगर गाता था, तो मैं 4-5 गाने एक फिल्म गाता था
0: जी।
1: तो आप सोचिए फिल्मों का गाने मैं 2-2.5 हजार और 4 हजार के करीब मेरे उड़िया गाने, सिर्फ उड़िया गाने
0: जी जी,
1: और दूसरे अलग 17-18 लैंग्वेज में मिला के 10 हजार के ऊपर गाने मेरे।
0: कुल कितनी भाषाओं में आप गाने गए?
1: 17 या 18।
0: चलते चलते कौन

0: मैं वापस आऊंगा। खुदा गवाह का ये गीत अजीज साहब रिकॉर्डिंग में हम सुना।
1: अफसोस कोई वापस नहीं आता, दुनिया को छोड़कर चला जाता है। क्या करें श्रोताओं, ऐसे ऐसे कलाकारों को याद करें और आपके साथ उतने ही बातें भी हो जाते हैं।
0: मगर ऋषा जी, अगले हफ्ते हम जरूर वापस आएंगे विविध अगला अंक लेकर के।
1: जी हाँ, तो इस वक्त हम अपने श्रोताओं से ले हैं इजाजत। आपको छोड़ के आते हैं हम याद गलियारे और हम जा रहे हैं अगली विविधा की तैयारी में। तो दीजिए इजाजत आप सभी को, आप मित्र निशा जैन
0: और जयंत पात्रीकर का नमस्कार।
2: ये थी विविध भारती के विविध कार्यक्रमों की विविधा।

0: अरे बाबा तुम भी तो बोलो ना।
1: ये बात है तो सुनो।
2: छोड़ो जान जाओ तुम भी कहाँ घबराते

जमाने को दिखाना है। फिल्म का आप सुन रहे थे आशा भोसले मोहम्मद और पद्मिनी कोल्हापुरी आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी बोल राव देव बर्मा का संगीत। विविध भारत पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं अमित कुमार की आवाज में, आनंद के बोल बुलदेव बर्मन का संगीत।
1: इस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से सता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की कीमत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।

0: ऐसे ही नया गीत का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार अजीत विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें,
0: सुनना न भूले हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विभारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की फिल्म।